देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता।

कितना पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए। लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore cells in the brain into 10,000. This is the human network. So many switches connected to so many switches. अब जब इतने switches से connected होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells connected to 10,000 cells, each cell connected to 10,000 cells in the body, and हर thought जो हम create कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रीट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि खुशी शायद होठों तक सीमित है, चाहे शायद मेरी हंसी तक सीमित है, चाहे मैं जब बच्चों के साथ होता हूं तो जो खिलखिलाहट होती है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो हंसी है, खिलखिलाहट है। खुशी मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर की वो फीलिंग है जो मैं खुद क्रिएट कर पाता हूँ। अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि लगता था कि यही सब बातें जो बाहरी रीति से हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, उसी पर खुशी निर्भर करती है, और निर्भरता बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस श्रृंखला में जहां हम बातें करने लगे हैं, वहां ये बात समझ में आती है कि ये मेरी अपनी अपनी क्वालिटी भी है और मेरी अपनी क्रिएशन है। मजेदार बात यह है कि उसे क्रिएट करने के लिए मुझे अपने थॉट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं संकल्प कर रहा हूं, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स आ रहे हैं या मैं उन्हें क्रिएट कर रहा हूं, ये भी एक नई वोकैबुलरी के साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुछ और बातें हैं जिनका हम रिकैप करेंगे, लेकिन पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। मैं थॉट तक तो ले आई कि जब हमने उस फीलिंग को देखा कि खुशी कहाँ है, मैंने देखा कि ये सब में ढूंढ रहे थे, ये सब में समझा वो नहीं है, क्योंकि हमने जब अपने आप को चेक किया तो वो खुशी मेरी अपनी क्रिएशन मुझे समझ में आई, और मेरा थॉट मेरी उस फीलिंग को क्रिएट कर सकता है। पॉजिटिव खुश वाला थॉट जो था वो क्रिएट करता है। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और ये जो इतना पावरफुल चीज है, इतनी शक्तिशाली वस्तु मेरे पास है, अनुभव कहें या कुछ भी कहें, एनर्जी कहें, वो कैसे क्रिएट होता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो थॉट्स क्रिएट करते हैं?
1: हमने जैसे देखा कि परिस्थितियां आती हैं, लोग ऊपर नीचे कई बार हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, एंड थिंग्स वर बिकमिंग चैलेंजिंग, अनप्रडिक्टेबल। यू नो, सडनली समबडी बिहेव्स इन अ वेरी अनप्रडिक्टेबल वे, एंड आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो कभी ना कभी ये एक थॉट चलना शुरू हुआ कि आखिर इस तरह से अगर जीवन चलती जाएगी तो देर इज जस्ट नो वे आई कैन बी हैप्पी। तो फिर हमने जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट वाली फीलिंग्स हैं, सॉरी, चाहे वो एंग्जाइटी है, वरी है, उनको स्वीकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि यस, सिचुएशंस आर चैलेंजिंग, तो सिचुएशन पर थॉट डिपेंडेंट है, तो यस, हमेशा खुश रहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमेशा सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने वाली है। हमेशा रिश्तों में हर चीज मेरे अनुसार चले, ये नहीं होने वाला है। लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को हमेशा मीट करें, ये नहीं होने वाला है। आप जैसा मैं सोचूं वैसा बिहेव करें, ये नहीं होने वाला है। सो इफ माई हैप्पीनेस इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन वी रियलाइज्ड के सिचुएशन तो बाहर से आती, थॉट हम करते, और अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें और अपने आप को चेंज करना शुरू करें, हो सकता है हम उसी परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील कर सकते। पहली बात तो हैप्पीनेस क्या है, यू नो, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन मार्क। वी रियली डोंट नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम यू नो बहुत ज्यादा कुछ उमंग उत्साह उस तरह की बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस डजेंट मीन ऑलवेज दैट यू आर जम्पिंग अप एंड डाउन, लाइक दैट्स नॉट हैप्पीनेस। कहीं कुछ बात हो गई है, घर में कोई हादसा हो गया है, किसी कोई इलनेस है, समबडी हैज लेफ्ट द बॉडी, तो देर इज नॉट क्वेश्चन। आप बोलोगे इस टाइम हाउ कैन आई बी हैप्पी? Yes, this time I cannot be happy, but can I be stable? That's very important. Or is it that pain and sorrow, ye natural hi hai, ye create karna hai? Kyunki jitna hum stable reh sakenge, utna hum us situation ko achhi tarah se cross kar sakenge. Aur stable rehne ke liye, mujhe us situation mein right kind of thought create karna padega. To humne dekha, jo thought hum create karenge, us quality ki fir hume फीलिंग्स जेनरेट होंगी, वो फिर हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, फिर हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी, एंड देन माय डेस्टिनी। और थॉट्स पर इन्फ्लुएंस किसका होता, क्योंकि आज ये समझ में तो आ गया कि थॉट्स सब कुछ काम कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन थॉट्स को चेंज कैसे करूं? ये तो आदत ही पड़ गई है मुझे नेगेटिव सोचने की। तब वी सॉ लास्ट टाइम कि थॉट्स पर जो चीजों का इफेक्ट होता, वन इज इन्फॉर्मेशन, वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज बिलीफ सिस्टम। हमारी जीवन में हम किन मान्यताओं के साथ, बिलीफ्स के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, एंड आई फील पर्सनली कि ये तीनों में से, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ठीक है फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो क्या फीड करना क्या नहीं फीड करना. पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखा कि हम बैठ कर उसके ऊपर वर्क करें तो वी कैन क्लीन इट ऑफ. लेकिन बिलीफ सिस्टम इज समथिंग दैट बचपन से शुरू होते होते एज आई वॉज ग्रोइंग मेरे अंदर बहुत गहरे डीप रूटेड है. एंड समटाइम्स आई डोंट इवन रियलाइज कि मेरे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं.
0: बिलीफ सिस्टम इन द सेंस कि बिलीफ सिस्टम बने कैसे, पूरा एनवायरनमेंट था मेरा क्या ऐसा है चीज़ yeah, बिलीफ सिस्टम बनाती है.
1: बिलीफ सिस्टम बनने के लिए भी इट कुड बी एनवायरनमेंट, इट कुड बी जो हमें सिखाया गया यू नो बचपन से. लेट्स से कि एज अ चाइल्ड मैंने ये देखा कि जब भी मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे डांटा गया है ना, या जब भी मैंने कुछ ऐसा कर दिया

0: अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम औरों पर ब्लेम कर दें कि जो भी बिलीफ सिस्टम के लिए, हमें फिर अपने जीवन में आज स्टॉप करके चेक करके देखना पड़ेगा कि वो बिलीफ सिस्टम क्या रिजल्ट क्रिएट करता है. यू नो, हर एक बिलीफ, यू नो, इट्स लाइक अ कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर बहुत पावरफुल एक सिस्टम है जो हमारे पास है, तो एक कंप्यूटर को चलाने वाला जो सबसे पावरफुल चीज होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम. उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास विंडोज है तो किसी के पास मैक है तो कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि सारे प्रोग्राम्स जो उस पर चलेंगे
1: वो कैसे चलेंगे.
0: तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, दिस इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा,
1: इसको तो बहुत सारी चीज, अब जैसे यही एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि दर्द के साथ रहना तो नेचुरल है.
0: एब्सोल्युटली, ये एक नेचुरल है. आज टेंशन होना तो नेचुरल है. हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं?
1: कभी खुशी कभी गम. यस,
0: ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, विच इज ओके. नो वन इज टू चैलेंज माय बिलीफ सिस्टम. आई हैव टू चैलेंज इट मायसेल्फ. मुझे खुद अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ है एक मान्यता है.
1: लेकिन बिलीफ जो है वो एक्सपीरियंस भी तो बन रहा होगा ना.
0: यस yes.
1: तो मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, मेरा अनुभव ये कह रहा है, और उसको मैंने बिलीव, जैसे बचपन में भी मैं देखती आई जो, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव होते गए, अनुभवों को मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया.
0: तो अब सपोज मैंने बचपन में ये सीखा कि जब भी कोई गलती करे तो उसको गुस्सा करो, ठीक है, तो मैंने भी ये पकड़ लिया. या मैंने ये सीखा कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुस्सा करते हैं ना तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब नहीं गुस्सा करते ना
1: तब मैं
0: तो मैं नहीं पढ़ती, तो मेरा अपना मस्ती चलती रहती है. लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने पढ़ा. तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम बना कि किसी से अगर काम करवाना है तो काम करवाने का तरीका क्या है, उनको डांट दो ना, वो काम कर देते हैं. नाउ आई टुक दिस बिलीफ सिस्टम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट इन माई लाइफ. तो चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो मेरे घर पर है, आई एम वर्किंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि किसी से काम करवाना उनको डांट दो. काम भी हो रहा है, लेकिन क्या मेरी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका इफेक्ट होता है? क्या मेरे रिश्तों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है? एक तरफ से आई एम सेइंग मुझे हैप्पीनेस चाहिए, हर एक कह रहा है मुझे खुशी चाहिए, दूसरी तरफ से मैंने बिलीफ सिस्टम बनाया कि गुस्से से काम होता है. हैप्पीनेस एंड एंगर, ये दोनों कच्चे कैसे रहेंगे? हाउ विल इट हैपन? आज मुझे रोज काम करना है, रोज लोगों से काम करवाना है, एंड रोज मैं इसी बिलीफ सिस्टम से काम कर रही हूँ कि गुस्से से काम होता है, गुस्से से काम. तो एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर गुस्से वाली, दिस एनर्जी गोज आउट एंड देन द सेम एनर्जी कम्स बैक. तो इतना गुस्सा क्रिएट कर कर करके सारा दिन, देन व्हाई एम आई सेइंग कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए?
1: काम तो होता गया ना, तो मैं तभी उसको यूज करूंगी ना जब काम नहीं हो रहा होगा.
0: राइट, तो आप काम करवाने के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, लेकिन हमने कभी स्टॉप करके लाइफ में ये चेक करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, सपोज हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि गुस्से से काम होगा, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि वंस आई वर्क विद दिस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर, मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए. अब रिजल्ट तो वो वाला नहीं आ रहा ना, रिजल्ट खुशी नहीं आ रही, गुस्सा बार बार करने के बाद खुशी रिजल्ट नहीं हो सकती. तो अगर वो रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन में अपनी जीवन को जीती हूँ कि इंस्ट्रक्शन कुछ और फीड करते जा रही हूँ और रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करते जा रही हूँ. करूँ गुस्सा, करूँ चिंता और चाहिए खुशी, तो कहां से होगी? नाउ अब गुस्से से काम भी क्यों करवा रहे हैं? चाहिए तो खुशी, लेकिन दूसरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि काम जितना होता जाएगा
1: खुशी
0: सफलता मिलती जाएगी, जितनी सफलता मिलेगी उतनी खुशी मिलेगी. नीड टू स्टॉप एंड चेक. दीज आर बिलीफ सिस्टम.
1: तो ये तो पूरी जिंदगी मेरे बिलीफ सिस्टम पे जुड़ी
0: हुई है. सब कुछ तो बिलीफ सिस्टम पे है. हर दैट्स व्हाई वी सेड इट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस क्वालिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है सब कुछ उस पर बेस्ड है, सारा कुछ उस पर बेस्ड होगा. सारा दिन में हमें पता भी नहीं चलता हम कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ काम करते हैं.
1: अभी तो हमें पूरा विंडोज खोलना पड़ेगा. इट्स अ बिग प्रोसेस एक्चुअली.
0: बट द थिंग इज के बिलीफ सिस्टम एंड वन इज द ट्रूथ. इज दिस द ट्रूथ? एंगर इज नेचुरल. ये एक बिलीफ है या ये एक सत्यता है? ये मुझे अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ये जो बिलीफ सिस्टम्स, अगर हम एक भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चले, सी द क्रिटिकल पार्ट क्या है. बिलीफ से थॉट क्रिएट होगा, थॉट से डेस्टिनी क्रिएट हो रही है. अगर मेरा एक भी बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा?
1: मेरी डेस्टिनी पर.
0: मेरी डेस्टिनी पर आएगा. एंड दैट्स वाई स्टॉपिंग एंड चेकिंग माई

0: बिलीव सिस्टम सारा दिन में, अगर आपके साथ कुछ भी बाहर आप जो एनर्जी डाल रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, कहीं आपको अंदर डिस्टर्बेंस फील हो रही है, जस्ट हैव टू स्टॉप एंड चेक मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें काम कर रहा है. एंड आपको अपना बिलीफ सिस्टम उसी टाइम दिखाई दे देगा इमीजिएटली. आपको सिर्फ वो इक्वेशन बनाकर रखनी है अपनी लाइफ में, बिलीफ इज इक्वल टू थॉट इज इक्वल टू डेस्टिनी. बीच का भी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ो उसको, दैट तो वो ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग. जैसे ही आपके अंदर कोई थॉट क्रिएट हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम दोनों बैठे हैं, अभी चार लोग आते हैं सामने, एंड वो चार लोग मेरे से नहीं बात करते, वो चार लोग ज्यादा आपके साथ ही बात करने लग जाते हैं, यू नो दे प्रेजिंग यू एंड दे अप्रिशिएटिंग यू, एंड आई एम नॉट फीलिंग नाइस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है ना, मुझे अगर फीलिंग के लेवल पर दिखाई देता, देन आई विल गो बैकवर्ड्स, आई विल से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कौन सी वाली थॉट क्रिएट हो रही है इसके पीछे, क्या थॉट क्रिएट हो रही है? तो थॉट ये क्रिएट हो रही है, इज शी बेटर देन मी, इज इट दैट पीपल लाइक हर मोर, दिस काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग, और ये थॉट इज मेकिंग मी फील लो. अब इसके पीछे मुझे बिलीफ सिस्टम अपना चेक करना पड़ेगा, कौन से बिलीफ की वजह से मैंने ये थॉट क्रिएट की. मेरा बिलीफ वो था कि जितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे उतना आई एम अ बेटर पर्सन.
1: ओ गॉड,
0: माई बींग गुड वर्दी नाइस वट एवर लेबल हमें लेना है,
1: आई थिंक यू सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम.
0: इट इज बेस्ड ऑन लोगों का अप्रिसिएशन, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं इवैल्यूएट कर सकती. तो वो बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, तुरंत जैसे ही मैंने वो चार लोगों को आपको अप्रिशिएट करते हुए देखा, मैंने, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इमिजिएटली द थॉट इज देन आई एम नॉट अ गुड पर्सन, शी इज अ बेटर पर्सन, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, पीपल डोंट लाइक मी, वो उसके बाद फीलिंग कौन सी क्रिएट होगी.
1: और उसके साथ साथ और इसके साथ जुड़ी हुई और बाकी और गंदी गंदी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, यू नो, लाइक ये एक्चुअली जेलेसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर.
0: यस, द जेलेसी किस बेसिस पर स्टार्ट हुई,
1: तो इट हैज नथिंग टू डू विद मी एंड यू,
0: इट हैज नथिंग,
1: इट हैज एक्चुअली टू डू विद अ बिलीफ सिस्टम विच एक्चुअली अगर मेरे सामने आए तो मुझे कहेगा कि लोगों से क्या फर्क पड़ता है.
0: एब्सोल्युटली,
1: लेकिन वो बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं मैंने फिट किया.
0: हाँ, तो अभी क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर हम उसको बिलीफ सिस्टम के लेवल पर चेक कर लेंगे कि कौन सा बिलीफ मेरा वर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर यही बिलीफ वर्क हुआ कि जितना लोग जिसको अप्रिशिएट करते वो ज्यादा अच्छा है, एंड हाँ. जहाँ ये लोग मेरे पास बात करने नहीं आए, मतलब आई एम नॉट गुड. नाउ दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी वेरी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी, और ये डिस्टर्बेंस के कारण मैं जेलस फील करूंगी, फिर मैं अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी. इट्स नथिंग टू डू विद यू एक्चुअली, आप बहुत जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फील करवाना है ना. अब इससे रिस्क ये होगा कि भले आपके सामने नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा फील करने के लिए मैं आपकी बुराइयां देखना शुरू कर दूंगी कि क्या है इसमें, क्या अच्छा लगता है, इनको क्या पता ये एक्चुअली कैसी है, इनको कुछ मालूम, यू नो, एंड माय इंटेलेक्ट माय माइंड विल स्टार्ट गोइंग एंड लुकिंग एट.
1: And you know, here this destiny is created because आपकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, you know, आप दूर होते जाते हैं ऐसे ही.
0: अब जब मैं ये एनर्जी क्रिएट करूंगी तब एक्चुअली लोग मेरे से परे हटेंगे, एक्चुअली हटेंगे, क्योंकि मैंने कौन सी एनर्जी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, नेगेटिविटी की, जेलेसी की. फिर हो सकता है जब मुझे चांस मिले मैं उन्हीं चार लोगों के पास जाकर इनडायरेक्टली थोड़ी सी आपके बारे में बुराई करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, तो मैं उनको बोल दूंगी आपको क्या पता है कानुप्रिया के बारे में, इनडायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट टाइम दे विल कम टू मी बिकॉज एंड नाउ आई एम एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम मी ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम. अब अगर उसी सीन में मैं अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, आई एम हु आई एम, आई नो हु आई एम, आई एम नॉट परफेक्ट, आई नो दैट वेरी वेल कि मेरे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, लेकिन उन पर मुझे ही काम करना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या किस बेसिस पर मेरे पास आते हैं, दैट डजंट मैटर, ये जर्नी मेरी अपनी है. तो मेरा आपके साथ जो कंपैरिजन करने की यात्रा होगी, दैट विल स्टॉप. हु आई एम इज बेस्ड ऑन हाउ आई नो माई सेल्फ, नॉट बेस्ड ऑन हाउ पीपल अप्रिशिएट मी और से टू मी. यस, ये नेचुरल है कि अगर आप एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं है. लोगों का आपके पास आना, लोगों का आपके साथ अच्छी तरह से बात करना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. इट इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी. आज के समय में वी कैन सी इट, इट इज पॉसिबल कि आई डोंट लाइक यू और फिर भी मैं आपके पास आऊँ, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलू. एंड अगर आप उस बेसिस पर अपने आप को इवेल्युएट करेंगे तो वो तो बहुत रिस्की है. मुझे अपने आप को खुद इवेल्युएट करना आना चाहिए. बट फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज माय बिलीफ सिस्टम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है और मुझे अपने उस पर काम करना है, अपने कमजोरियों पर. लोग क्या कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि लोग अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं. हाँ, लोग जो कहते हैं आई कैन टेक दैट एज अ फीडबैक, बट जस्ट टेक इट एज अ फीडबैक एंड वर्क विद माई सेल्फ. तो एक एक बिलीफ सिस्टम मेरे थॉट पर एंड फिर मेरी डेस्टिनी पर काम करता है. और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं इसमें मेरा क्या है, ये तो इनकी वजह से हुआ. इट इज टोटली
1: ऑफ कोर्स यू नो. एंड व्हाट हैपेंस, सडनली आई रियलाइज दैट दिस इज वेयर द फ्रेंडशिप स्टार्ट्स यू नो सोरिंग अप.
0: वो तो डेस्टिनी फॉर देयर बिल्कुल. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप. मैं कितने दर्द से गुजरने वाली हूँ अंदर, मेरे अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ जाता है. क्यों आ जाता है? हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं. ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है, कॉम्पिटिशन,
1: कि अगर मैं मुझे अच्छा होने के लिए या मुझे जीतने के लिए किसी को तो हारना ही है. जिंदगी एक हार जीत है.
0: जिंदगी एक हार जीत है, बताओ ये बिलीफ सिस्टम हमारा बना है.
1: जिंदगी इज, लाइफ इज अ वॉर,
0: लाइफ इज अ गेम.
1: यस,
0: लाइफ अगर गेम बोलेंगे, लाइफ इज अ गेम, तो इट ऑलवेज बी के देयर विल बी अ विनर एंड देयर विल ऑलवेज बी अ लूजर. अब अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलूं कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ गेम, इट्स अ वॉर, तो मैं सारा दिन क्या करूंगी औरों के साथ?
1: खेल खेलती रहूंगी ना, गेम खेलती रहूंगी.
0: यस, एंड सारा
1: और गेम
0: दिन
1: खेलने में मैं जीत हार को देखती रहूंगी, कौन जीता कौन हारा.
0: एब्सोल्युटली. और जैसे ही अगर मुझे कहीं दिखाई दिया कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कुछ भी कर देना आपसे आगे निकलने के लिए, चाहे वो ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे आपको क्रिटिसाइज करके आपको नीचे गिराना है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग क्योंकि लाइफ इज अबाउट मी गोइंग अहेड ऑफ यू. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम. तो एक बिलीफ सिस्टम मेरे पूरे अंदर की सोच को, मेरी फीलिंग को सारा चेंज कर सकता है. एक बार तो रुक कर देखें, वेयर इज द कॉम्पिटिशन.
1: किस बात का कॉम्पिटिशन? मेरा जो ये थॉट क्रिएट हुआ है वो किस बिलीफ सिस्टम पे है?
0: स्टॉप करके देखना पड़ेगा. हाँ. क्या इसके पीछे मेरे अंदर, दिस हैपेंस स्लोली, ऑब्वियसली वो एकदम से पहले दिन पर नहीं होगा, लेकिन कई बार जब भी आपके बिलीफ आपको ध्यान में आए, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, क्योंकि इतने सारे बिलीफ हमारे इतने सारे बिलीव्स हैं कि सपोज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आपको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. अगर आपने नहीं अप्रिशिएट किया तो मुझे बुरा. क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया तो अप्रिसिएशन तो मिलनी ही चाहिए.
1: प्रेज
0: तो मिलना ही. इट्स सो नेचुरल.
1: सी, इट इज नेचुरल. मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यू शुड एटलीस्ट अप्रिशिएट. एटलीस्ट अप्रिशिएट.
0: सी नाउ, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, हमें इमीडिएटली पता चल जाता है नहीं मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहती थी. या बिलीफ सिस्टम, अगर मैंने आपके लिए अच्छा किया तो आप भी तो रिटर्न में अच्छा ही करोगे. बिलीफ सिस्टम है
1: तो वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा करेगा.
0: क्या जरूरी है आज के वो अच्छा करेगा?
1: हाँ, वो किस थॉट प्रोसेस में? और अच्छा,
0: और अच्छा
1: क्या
0: और
1: होता
0: क्या
1: है?
0: अच्छा और बुरा तो मेरे रेफरेंस पॉइंट से है ना. अच्छा और बुरा आपके रेफरेंस पॉइंट से तो है ही नहीं. आप अपने अनुसार तो हमेशा अच्छा ही कर रहे हो वैसे भी, लेकिन मेरा बेंचमार्क वो
1: ये बना रखा है मैंने. ओह यस, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आती हूँ, मैं आप जब बीमार हो जाते हो मैं आपकी इतनी केयर करती हूँ, मैं बीमार होकर पूछा तक नहीं आप
0: नाव से. फिर थॉट कौन से क्रिएट हुई, फीलिंग कौन से क्रिएट हुई, अगली बार मैं नहीं करूंगी आपके लिए. डेस्टिनी, दिस इज हाउ इट इज चेंजिंग. नेक्स्ट वी चेंज आवर बिलीफ सिस्टम एंड वी से मैं वो करूंगी जो करते हुए
1: मुझे
0: अच्छा लगता है. नॉट मैं वो करूंगी ताकि इन रिटर्न आप करेंगे, क्योंकि उस बिलीफ सिस्टम से मुझे क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला?
1: हर पेन. यस, रिजेक्शन, पेन, अननेसेसरीली यू नो. एंड देन वी स्टार्ट प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन आल्सो.
0: एब्सोल्युटली.
1: यू नो वी स्टार्ट एक्सपेक्ट, यही एक्सपेक्टेशन आने लगती है फिर.
0: मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए क्या किया? या मैंने आपके लिए इतना पूरे जीवन मैंने आपके लिए ही किया, आपने क्या किया? तो ये बिलीफ सिस्टम्स की चेकिंग क्यों जरूरी है? बिलीफ सिस्टम्स को धीरे धीरे चेंज करते जाएं और वो वाले बिलीफ सिस्टम्स एस्टैब्लिश करें जो हमारे जीवन को स्मूथ, इजी एंड हैप्पीनेस हम क्रिएट कर सकते हैं. इफ आई कैन चेंज माई बिलीफ सिस्टम एंड आई कैन से आई विल डू वट आई वॉन्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, Is it possible to lead?
1: Saying it is easy.
0: So doing will come with practice, na?
1: Yeah. You know, see, again, this is what I'm saying. कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं happiness index, अगर मैंने कुछ किया हुआ है किसी के लिए और वो वापस या मेरी जब सिचुएशन आई तो उसने वैसे नहीं रिएक्ट किया या नहीं किया, तो वो जो पेन है उसमें मैं उस वक्त तो हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकती,
0: नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वो प्रोग्रामिंग अपने कर ली थी कि मैंने आपके लिए किया
1: तो मुझे आपको करना,
0: तो आपको करना ही है. जैसे ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जिसके लिए मैं अच्छा करूंगी उसको मेरे लिए अच्छा करना ही है. जैसे ही वो अगर नहीं करते हैं या वो उस तरह से नहीं कर, सी एवरी वन इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. हो सकता है आपकी नेचर है कि आप बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब आप डिनर होस्ट करेंगे तो आप इतना कुछ कर देंगे, आप गिफ्ट्स देंगे तो इतने देंगे, आप मेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं. हो सकता है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. मेरे लिए आप घर पर आओगे तो मैं पूछूंगी आप चाय पियोगे क्या, यू विल से लाइक आप मेरे घर आए थे तो मैंने तो पूरा डिनर आपके लिए बनाया था और आप मुझे पूछ रहे हैं चाय पियोगे कि नहीं पियोगे. यू आर हर्ट. You don't feel anything
1: for me. Of course, I'm hurt. I'm badly hurt. You know, we get hurt.
0: Yeah. Now, this is, we are talking on physical things. And yehi same cheez,
1: emotional.
0: Subtle, emotional level par bhi work hoti. Ke jitna main aapke liye kar rahi hoon, mera ye belief hota hai, aap bhi usi proportion mein mere liye karenge. Ye bahut deep belief system hai. Aur yahan kahin na kahin fir hum...
1: Aur ye hum justified. See... We say that this is right. It should be like this. Yes. But then we have to check ki wo mujhe pain de raha hai. It means it's not right.
0: That's because, yeah, that belief system is definitely not right. Oh. Kyunki harek ka personality different hai. Harek ka sochna, harek ka karna. It's not that they're wrong, wo bad hai. Lekin unka right and wrong different hai. Aap jitna karte ho, meri capacity... नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाती. लेकिन क्योंकि आपने ये बिलीफ बनाया था कि मैं उतनी ही कैपेसिटी में करूंगी, आप हर्ट हुए जब मैं नहीं करती. अब आप अपने बिलीफ को अगर थोड़ा सा चेंज करो कि मैं आपके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये करते हुए मुझे अच्छा लगता है, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग टू मच इन रिटर्न. यहां तक के लाइक वन आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग फॉर समवन, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे रिटर्न में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई जस्ट लाइक डूइंग इट, तो मैं कर रही हूँ. लेकिन होता ऐसे कई बार कि वो अच्छा तो कुछ नहीं किया रिटर्न में, लेकिन किसी ने हो सकता है कि एकदम
1: धोखा दे दिया,
0: कुछ गलत कर दिया, कुछ बहुत, एंड आई फेल्ट हर्ट, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा. एंड देन आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक्सपेक्ट, हम ये सोच रहे थे, मैं वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, मैं ये सोच रही थी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मेरे को करने दो, मुझे करते हुए अच्छा लग रहा है. लेकिन आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने बुरा कर दिया, तो दैट ऑल्सो यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन.
1: एटलीस्ट आप कुछ मत करते.
0: सो मैंने वो बिलीफ बनाया था कि मैं अच्छा करूंगी, आप कुछ मत करना. लेकिन आपने जो मैंने सोचा, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरे ऊपर कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ गया, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन था. तो इफ आई कैन चेंज माय बिलीफ सिस्टम टू मैं वो करूंगी जो मुझे ठीक लगता है,
1: विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट एनीथिंग,
0: यू नो हाउ सिंपल माय लाइफ विल बिकम.
1: Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand. You know, it's a major, major shift. Ki one, realizing कि जहां मुझे बुरा लगने शुरू हो उस समय हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली वी शुड नॉट ट्राई टू मूव अहेड, वी शुड लुक एट कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है जिसने मेरा ये थॉट क्रिएट किया. अगर आपके पास कोई मन में सवाल उठता है, कोई बात अभी लग रहा है कि इससे जुड़ी हुई है, तो आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 01244-2666-000-999-344-555-999-344-666-9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत मेजर नया बिलीफ सिस्टम हमने किया है कि जितने भी जो भी नेगेटिविटी मुझे होती है उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है जिसे चेंज किया जा सकता है. वो चेंज कैसे होगा वो हम अगली कड़ी में जानेंगे. लेकिन अभी सिस्टर शिवानी, आज एक बहुत मेजर हमें अगेन हम कहेंगे एक चाबी है, एक कुंजी है, एक की है टू एक्चुअली सॉल्व द यू नो इट्स की टू हैप्पीनेस बेसिकली. सो लेट्स रिफ्लेक्ट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स विद अस.
0: कंफर्टेबल होकर बैठे, वी नॉट डूइंग एनीथिंग अननेचुरल, अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मान्यताओं के आधार पर जीवन चलता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में अपने अनुभवों को देखते, अगर वो अनुभव, वो फीलिंग्स कंफर्टेबल नहीं लगती, तो अपनी मान्यताओं को चेक करो। वो बिलीफ्स जो हम समझते थे कि यही सत्य है, लेकिन ट्रुथ इज ऑलवेज कंफर्टेबल, ट्रुथ विल ऑलवेज मेक मी फील पीसफुल। समवेयर देयर इज अ कंफ्यूजन। Happiness is natural. Happiness is unconditional. Happiness is my creation. मेरी खुशी मेरी अपनी रचना है, ये किसी पर भी आधारित नहीं है, ये मेरे हाथ में है। आज इस बिलीफ को लेते और सारा दिन की यात्रा पर चलते हैं और चेक करते क्या अनुभव होता है। ओम शांति।
1: ओम शांति। जिस तरह से साइलेंस में बैठकर हमने अपने सबकॉन्शियस को, आपने पहले भी कहा था कुछ कुछ बीज बोने की जरूरत है, तो आज साइलेंस में बैठकर अपने साथ इस एक बिलीफ सिस्टम को डालने की कोशिश की है, और ये प्रयास संभव रहेगा कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी वैल्यू है, एंड आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम आई वांट। इसी के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि इस श्रृंखला में जो जो हम सीख रहे हैं उसे हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओम शांति।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी में। जिंदगी का ये सफर तय करते, कई रोल्स निभाते, कई बार एक सवाल बार बार उठता है कि कौन हूँ मैं। उस सवाल को हम दबाकर आगे बढ़ जाते हैं और हर रोल को फिर निभाने लगते हैं। लेकिन हमने जो ये सफर तय किया है उसमें इस सवाल को सामने लाए हैं और इस पूरे सफर में ये तलाशने की कोशिश की है। कई जवाब हमें मिले भी हैं, लेकिन हम उस पड़ाव पर पहुंचे थे कि किस तरह से जो हमारी ईगोज हैं वो कई बिहेवियर्स जो हमारे होते हैं उनको बताती हैं कि वो अड़चन बन सकती है और कैसे हम सुप्त अवस्था में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जागना क्यों जरूरी है और जागा कैसे जा सकता है, यही आज तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस कड़ी में। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने अपने बारे में जानने की कोशिश की है, जाना है कि ईगो क्या है। जिसे हम मानते थे कि ईगो है वो कहीं ना कहीं अंदर के आंतरिक भय से जुड़ा था, अटैचमेंट से जुड़ा था, और अब ये भी जान गए हैं कि हम सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जागना जरूरी है।
1: जागना टू रियलिटी।
0: यस,
1: से अवेकन टू व्हाट? अवेयरनेस ऑफ व्हाट? अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस। अभी तक सोए हुए थे, मतलब सोचेंगे क्या सोए हुए थे कि जो सत्य है उसकी तरफ जैसे मुंह उससे परे हटा हुआ था, आंखें बंद थी। तो जिसको हम कहते हैं अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, नहीं कहते कि तीसरा नेत्र खुल गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया। जो असलियत है, जो सत्यता है, जो अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में जागृता हो गई। तो नाउ क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया, अब उसको फॉलो करना शायद थोड़ा सा इजी हो जाना चाहिए।
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, जैसा आपने ये कहा कि किसके बारे में जागना है, क्योंकि हमें कई बार कहा जाता था, मुझे भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो कहा जाता है कि खुद के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेडिटेट करो। ये सारे सवाल आते तो थे, सब कुछ तो था, लेकिन करना कैसे है? आज जब ये प्रोसेस समझ में आया है कि ये होता है हमारे अंदर, ना किस तरह से हमारा थॉट जो है वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करता है, किस तरह से ईगो दो तरह की हो सकती है। हम हर्ट होने को, सेंसिटिविटी को अपनी हम अपनी स्ट्रेंथ मानते थे, वो कहां किस तरह से हमारे भय का एक रूप होती
1: और
0: है,
1: कोई ना कोई एक अटैचमेंट है,
0: हाँ,
1: जो पकड़ी हुई है। वी हैव टू लेट गो ऑफ दैट।
0: लेकिन ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जो सुप्त अवस्था है, हम नहीं जानते कि भाई क्या है हम, उसको जागृत करने का प्रोसेस अब क्या है?
1: We will have to go through a few steps. मतलब ये सब कुछ जैसे आपने कहा हमें समझ में भी आ गया, फिर भी सारा दिन में करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको समय देना पड़ेगा। एंड वो समय देना मतलब क्या, आप देखो सवेरे से उठते हैं, इट बिगिन्स विद न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इस तरफ से रेडियो ऑन है, चौथी तरफ सब तैयार हो रहे हैं, शोर मच रहा है। एंड एक्चुअली जो सारा दिन हमारा बीतता है वो बहुत शोर में बीतता है। शोर नॉट नेसेसरीली बाहर, लेकिन शोर अंदर। यू नो, इफ यू जस्ट एक मिनट के लिए डिटैच होकर सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखें, तो सारा दिन साइलेंस बहुत कम है। सारा दिन मन में ये करना है, ये करना है, जल्दी करो, यहाँ हुआ कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये करना था। द स्पीड ऑफ द माइंड इज वेरी फास्ट। अगर इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो फिर रास्ते में कौन आ रहा है जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा। यू नो, इफ यू आर गोइंग एट 120 तो यू विल नॉट रियली सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द जर्नी।
0: बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अस।
1: इनसाइड में
0: अंदर ही इतनी तेज स्पीड पे चल रहे हैं,
1: बहुत ज्यादा तेज है ना। आप देखो संकल्पों की गति इज अबाउट 25 to 30 थॉट्स पर मिनट, और आजकल हम बहुत ज्यादा नॉर्मल स्पीड पर भी नहीं है, वी आर स्लाइटली हायर स्पीड। आप देखो सड़क पर भी गाड़ी चलाने की एक स्पीड रखी जाती है ना, आज कितनी पुलिस खड़ी होती है कि जैसे ही आपने उस स्पीड को क्रॉस किया स्टॉप। क्यों? जहां स्पीड बढ़ेगी वहां कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। मन की स्पीड इस टाइम कैसी है?
0: बहुत फास्ट है,
1: बहुत फास्ट है। एक संकल्प उसके बाद तुरंत दूसरा, मतलब देयर इज नो टाइम, इतना फास्ट है। और जितनी स्पीड ज्यादा है तो समझ लीजिए कि क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखो जब हम परेशान होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसके बाद तो मन की स्पीड कैसे चलती है? क्यों कहा, अपने को ऐसा समझता है, सबके सामने बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है क्या, मेरी सेल्फ, इट्स फास्ट। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना है आप उसकी स्पीड देखिए, इट इज स्लो। तो पॉजिटिव थॉट्स विल ऑलवेज बी स्लोअर एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर। तो अगर बहुत स्पीड ज्यादा है इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा नॉइज सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इन्फॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन. जितना भरते जाएंगे उतना
0: हम खाली होते
1: जाएंगे. इट विल गो वेरी फास्ट.
0: इनफैक्ट मैंने हमने ये भी देखा है कि जैसे ही हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज की तरफ.
1: हम खाली रहना नहीं चाहते. हमें अभ्यास ही नहीं रहा कि दो मिनट अगर बैठ जाए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट इज बीच बीच में कुछ क्षण निकाल के जस्ट बी क्वाइट. एंड नॉट बी क्वाइट जस्ट वर्बली. ना शांत रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख से चुप रहना, लेकिन आंतरिक.
0: तो क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम?
1: सप्रेस नहीं करना और ना थॉट को बंद करना है, लेकिन देखना है इस समय. लेट्स डू इट राइट नाउ. जो सभी देख भी रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इस क्षण हम कर सकते हैं. जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, एक सेकंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए. जस्ट स्टॉप. एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा. एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम. वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा अभी ये करना है. वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ. इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे. बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, मन लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है. तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा. उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा. वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए. तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, एक मिनट, दो मिनट, कुछ मत अभ्यास करेंगे, कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है. जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं. बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं. इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है. तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक.
0: ओके.
1: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड. इट्स योर माइंड. अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, अभी आपको ये नहीं करना ये करना, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना. कान सुनेगा, मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा. सबके मन से बात कर सकते हैं, तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते हैं?
0: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं, आई द सोल इज टॉकिंग.
1: या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी, तो मुझे कोई और चीज के बारे में पता चला. अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा है. यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा. थोड़ी देर के बाद कोई पूछता है, आर यू रियली लिसनिंग? ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग. एंड ऊपर ऊपर से वील गो, यस यस आई एम लिसनिंग, बट नो. एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर कर कुछ और देंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइंड, मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स. ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम. सुना तो था, कानों ने सुना था,
0: रजिस्टर नहीं हुआ.
1: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. आई एम हियरिंग, कान सुन रहे हैं, लिसनिंग
0: समझ रहे.
1: तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है.
0: अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार, जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें, या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है
1: अभी चेक करें, अभी क्या चल रहा है. कुछ और चल रहा है. अपने आप से पूछे क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है. इसके बारे में कब सोचे? शाम को सोचेंगे घर जाने के बाद. ठीक है, शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप. इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड. अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहे
0: हिसाब से जो उसे समझ में.
1: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे. तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है. दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम. और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा, और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा. लेकिन थोड़ा सा उसके साथ, एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक. क्या सोच रहे थे? अच्छा, ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये. ओके, लिविंग इन द प्रेजेंट. किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए. ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए. घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है. जितना थोड़ा समय मिलता है, इट शुड बी क्वालिटी टाइम. यू नो, वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है. मेंटली अभी भी मन सोच रहा है, क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी, या वट एवर. टेल द माइंड, वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था. जो भी किया था, कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद, एंड इट विल लिसन. गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन. माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना. अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है. हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
0: तब सोचेंगे.
1: यस, एंड इट इज सो परफेक्ट. वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा.
0: अच्छा, इट लाइक हियर यू.
1: या इट इज लिसनिंग. व्हाट इज इट? इट इज प्रोग्रामिंग. एक इंस्ट्रक्शन फीड हो रही है. कंप्यूटर में भी रिमाइंडर फीड करते हैं ना, टुमोरो मॉर्निंग 9 o'clock रिमाइंडर, और वो एग्जैक्ट 9 o'clock आ जाएगा. सेम टू द माइंड.
0: गुड, इट्स लाइक गुड. एक्चुअली वी कैन ऑलवेज ट्राई इट आउट. लेट्स ट्राई
1: करेंगे, वो प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, एंड इट विल हैपन. एक बार अगर सपोज उसने आपकी बात नहीं मानी, फिर आ गया, आपको कहा ना कल सुबह 9 बजे, फिर आ गया, क्या कहा था आपको, कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा, फिर इट्स डन.
0: ओके, That's nice.
1: It's very simple. It's very simple.
0: So, okay.
1: But yeah, the thought should be, ये मेरी काम की चीज है ही नहीं, so stop. Why am I wasting my energy? Full stop. फिर आएगा thought, ये मेरे काम की चीज नहीं है, it's wastage of energy. Stop. दो बार, तीन बार, finished. नहीं, अगर नहीं stop किया,
0: तो आता रहेगा, और वो convert करेगा फिर destiny में.
1: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी chain आती है फिर उस thoughts के. इसलिए जहां अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर दूसरी साइड पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
0: वापस ले आते हैं.
1: तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता. कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं, लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर.
0: सो लाइक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स एक्चुअली, यू नो, लाइक इट्स अ टिप कि वी कैन ऑल यूज इट. इट्स अ प्रैक्टिकल टिप एक्चुअली.
1: बिल्कुल. सो सिंपल है, बीच बीच में थोड़ा सा क्वाइट हो जाए और अपने मन को देखे. दूसरी चीज जो बहुत सिंपल हमें करनी पड़ेगी, अटैचमेंट्स जो हमने देखी थी, लेट गो. लेट गो करना पड़ेगा.
0: नाउ लेट गो टू द अटैचमेंट, बेसिकली
1: टू द अटैचमेंट.
0: सो दैट इज लाइक वी हैव टू गो डाउन, यू नो, लाइक जो हमने पूरा प्रोसेस देखा कि जहां हमने ईगो की बात की, वो ऐसा बिहेवियर जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारे ईगो को जनरेट कर रहा है. बिकॉज अभी ये मिथ भी तो लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो, लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे. तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस.
1: सो वी हैव टू लेट गो. इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, अभी भी वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड. ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा. But let go, don't hold on to it. और बहुत चीजें जो हम बहुत attached हो जाते हैं, past और future. उसको let go करना
0: कि future में ऐसा हो जाएगा, या past में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया past.
1: उसके साथ
0: that's very difficult, you know?
1: अच्छा या negative भी.
0: हाँ,
1: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं.
0: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी.
1: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं. Who will let it go? कौन था? आप खुद ही देखो. आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है.
0: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है. इसका मतलब मैं कभी भी चाहूं रिवाइव कर सकती हूँ.
1: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे, आप अपने आप को कष्ट देते हैं.
0: बिकॉज वी गो थ्रू द सेम पेन.
1: सेम पेन, थॉट, फीलिंग, attitude, everything.
0: And that chemical thing, I still remember that, yes. You know, because pain is something which people at times do start enjoying.
1: और आपको पता है कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, I just pick up something from the past.
0: पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ, करती रहती हूँ.
1: इतना सारा accumulated है कि fresh talk अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा है. कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, just one second is needed. आपने वो incident उठाया and that's it.
0: You get that
1: same pain and everything all over again. And then you're like, हाँ मेरा तो भाग्य ही ऐसा है. वो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन सेल्फ सिंपथी फिर वो शुरू हो गई.
0: We want to change them. Yeah. And especially, you know, when we fall in love, when we care for the other person, or maybe, you know, like now too, I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe, you know, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect.
1: Want him to be. तो हम सारा दिन जिसको हम कहते हैं हम दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हैं. आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए. वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट. जितना हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे यहाँ प्रेशर है. क्योंकि आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियस उसको डिस्टर्ब कर रहा है. फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं. आप देखो, करके देखना, एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है. डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जैसे हैं, इट डजंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे. अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिसिप्लिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे. आप बहुत ज्यादा उसको पकड़कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं. आप इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दैट्स ऑल. उसके बाद वो जैसा है यू विल हैव टू एक्सेप्ट. उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, नहीं तो इट इज अ टर्मोइल. बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है. तो बी क्वाइट बीच बीच में, लेट गो जो भी अटैचमेंट्स है एंड लेट पीपल बी. वो जो है जैसे है बहुत अच्छे हैं. ये एक थॉट भी, ये जो है जैसे है बहुत अच्छे हैं. आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट. तो इट इज एक्सेप्टेंस. तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है. जैसे ही हम ये तीन चीजें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना, वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा. हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद. यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी, और जैसे ही वो आने लगेगी, फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज, वो सुनाई देने लगेगी. अंदर की आवाज मतलब जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा. एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन. अपनी सॉल्यूशंस खुद से. अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए.
0: हाँ, बिल्कुल.
1: लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है. तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन. Now I can see my own solution. एकदम स्पष्ट दिखाई देगा. तो we will be able to start listening. अंदर वो जो हमारी intuition है वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है. And then we really wake up. क्योंकि we are awake कि क्या हो रहा है. मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए एक awareness क्या चल रहा है अंदर. अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते देयर विल बी एन अवेयरनेस. ओके, नो दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक, चेंज. Fast.
0: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए,
1: हाँ,
0: या पानी पी लीजिए. लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. वो हो ही नहीं पाता था,
1: वो हो नहीं पाता था,
0: कि पूरा प्रोसेस नहीं होगा.
1: और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वॉज यही कि गिव योर सेल्फ लिटिल गैप टू सी. लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं, गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप, राइट लेन पर उसको लेके जाना है, and it will go. So you wake up. You wake up to the process that's going on inside. Aap continuously aware ho jayenge. Jaise kisi ko criticize kiya, turant awareness hogi. Kya dar tha mujhe? किस लिए मैंने इनको क्रिटिसाइज किया? अच्छा, मुझे ये डर
0: था. प्रोसेस शुरू हो जाएगा अंदर तलाशने का.
1: मुझे किस बात का डर था? नहीं, छोड़ दिया तो फिर क्रिटिसिज्म बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज वो नहीं होगा. अनलेस माइंड दैट इनर प्रोसेस गेट सिंप्लीफाइड, तो अब अवेयरनेस आएगी. अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
0: के बीच का जो
1: हार्मनी. अभी क्या हो रहा था? इनर प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था. आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है. एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज, जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप. वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है. एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती ही नहीं है. हम जो कहते हैं ना, जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. आपने इस तरह से क्यों बोला? जी मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है. आदत मतलब ऑटोमेटिक. अब हम ऑटोमेटिक नहीं है.

0: दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये चार बातें भी अगर हम ठीक से कर लें, लेट गो, लेट बी क्वाइट, स्टार्ट लिसनिंग, वेक अप एंड नो योर सेल्फ, जो हमने पहले भी देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका प्रोसेस है, कौन अंदर काम कर रहा है. और सारा दिन याद रखना मैं कौन. जब हम क्वाइट भी हो जाते हैं, क्वाइट होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा. उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन मैं कौन, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते. Changed. So at every step we will be able to do it then.
1: It's a whole process actually, but then अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा. इट इज विद इन अस, यू नो. सबसे पहले आपने बात यही कही कि क्वाइट, शांति, एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है,
0: अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं लेकिन अंदर चुप. यू नो, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे, हमेशा ही आवाज है चारों तरफ. बट इट्स नॉट दैट नॉइस, इट्स इंटरनल.
1: इंटरनली, यू नो, लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो. एंड थर्ड इज लेट बी, लेट पीपल द वे दे आर. सो इन तीन स्टेप्स
0: बहुत लाइफ इजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है. बट देन इट डस टेक टाइम एक्चुअली शिवानी.
0: यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज. आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
0: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है. दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल. ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही अगर समझ ली जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे. तो शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है. सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है. सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं. और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें. और हम भी लेट गो कर दें, यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें. शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा.
0: They will come back.
1: और जो कभी था नहीं आपका, उसको आप कितना भी रोक लीजिए.
0: तो ये सब फिलोसॉफिकली हमें पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल आती है. तो चलिए, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, जानेंगे कुछ अपने बारे में. लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: A very warm hearty welcome to you, CV Raju ji, and thank you so much for taking out time and meeting us and our audience. And I am very sure today the listeners of Radio Madhuban would be very overjoyed to hear some very colorful experiences from you. How are you?
4: Yeah, I'm good. Thank you very much. What about you, sir?
3: So, as I understand that this special artwork of creating toys is something that has been in and around your childhood since the very beginning. You have seen yourself. So when we talk about the Etikupakka toys, you must have had your entire childhood surrounded by them. Because as I understand, you come from the village that is famously known for those toys. So how was your childhood like?
4: You're asking about my childhood life. Yes. Basically, I play mostly with the tops. In my childhood days, they are so colorful by the time. Finally, I settled in the village as an agriculturist. And I started my journey in this field in the year 1988. Basically, I'm an agriculturist. Okay. And my elder generation, my uncles and all, they made us sit one evening and talked about the decline and the instinct of this craft. Then I made a case study on that. By the time I realized two aspects. One is that quality conscious, they lost that quality conscious. At the same time, there's no lack of diversification. Based on this case study, my uncle connected me to so many concerns like Uzra Bilgrami, Laila Tyabji, and Jaya Jetli. Like, they're all craft expertise. And they are working with these non-governmental organizations like Dastakar Natsanti. And with

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है जीवन एक साधना है, संघर्ष नहीं। चलिए हम इस पर आज चिंतन करते हैं। आज के इस व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी किसी न किसी चिंता, तनाव या दबाव से गुजर रहे हैं। कभी काम का बोझ, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी भविष्य की चिंता। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, क्या जीवन सच में इतना कठिन है? प्रिय श्रोताओं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना लिया है। असल में जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर साधना है। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है हर दिन हर कार्य को पूरे मन से करना। जब हम अपने काम को बोझ समझकर करते हैं तब तनाव पैदा होता है, लेकिन जब वही काम हम कर्तव्य और सीख के रूप में करते हैं तो वह साधना बन जाता है। आज हम सफलता को सिर्फ पैसे, पद और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि शांति भी सफलता का एक मापदंड है? यह सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो फिर वह सफलता अधूरी है। प्रिय श्रोताओं, भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम परिणाम से ज्यादा कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। आज की सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकाव। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और। आध्यात्मिक जीवन शैली हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जब हम इस क्षण को स्वीकार करते हैं तभी जीवन सरल और सुंदर बनता है। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, जरूरत है केवल दृष्टि बदलने की। यदि हम हर दिन थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकाल लें, अपने मन से बात करें, आभार व्यक्त करें, तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इसी संदेश के साथ यही कहना चाहूंगा, जीवन को संघर्ष नहीं साधना बनाएं। तो मित्रों, ये था आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बकवास है सब बकवास, सब बकवास है सब बकवास। बालू मेहता का जिसकी चलती है हुकूमत उसकी, है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत, यहाँ ताकत ही सही सब बकवास। किसने की प्रेम की बात, उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त से सख्त सजा दें।

0: तुमने कहा था ना कि बाजू में है ताकत जिसकी, चलती है हुकूमत उसकी।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी
1: विद ब्रह्मकुमारीज। नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, वेर इट सेज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर। इट सेज वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आवर सेल्व्स लर्न इट और इग्नोर इट, कंपैशनेट और क्रूवल, जेनरस और माइजरली। No one forces us. No one decides for us. No one drags us along one path or the other.
2: Beautiful.
1: We are responsible for what we are.
2: Perfect है ना? कितना सुंदर लाइन है।
1: फिर वो बच्चों बचपन से बातें कहाँ गई, इसको गलत कंपनी मिल गई, दोस्तों ने खराब कर दिया, इसका माहौल ऐसा था, ये बच्चे की को उस टाइम पे हमारे पास ये नहीं था, हम वहाँ जाके रहे, स्कूल ऐसा मिल गया, तो क्या वो मैंने चूज किया?
2: परिस्थितियाँ अलग अलग।

0: हो सकते हैं। ये जो कोटेशन है वो ये कह रहे हैं, वी अलोन डिसाइड व्हाट वी आर।
1: तो व्हाट वी डू वही आर होंगे ना।
0: व्हाट वी डू वही तो हम आर कैसे हो गए।
1: व्हाट वी डू दैट वी आर।
0: व्हाट वी आर दैट वी डू।
1: ओके, लेकिन जो जो हरकतें हैं,
0: देखो व्हाट वी डू व्हाट वी आर, एक है जो हम करते हैं व्हाट वी डू, एंड एक है हु वी आर, जो हम हैं। तो जो हम करते हैं उससे हम नहीं बनते हैं, जो हम हैं वैसा हम करते हैं।
1: तो जो हम हैं सिस्टर वो माहौल पे डिपेंड नहीं करता है।
0: माहौल
1: तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर गलत मिला, कंपनी गलत मिली, इसीलिए जो हम बात करते हैं उससे हटके ये बोल रहा है।
0: हर आत्मा एक बंडल ऑफ संस्कार से, कुछ संस्कार हमें मिलते हैं
1: जी,
0: राइट। जैसे इस प्रेजेंट बर्थ में भी अगर ले ले, कुछ संस्कार तो हम आत्मा पास्ट बर्थ से ही लेकर आए हैं। भले वी चोज दैट बट वी हैवन्ट चोजन इट नाउ, वी चोज इट बिफोर, राइट। तो कुछ चीजें हमें लगता है मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये संस्कार तो मेरे पास ऑलरेडी है। सो सम संस्कार आत्मा पास्ट बर्थ से लेकर आ रही है, कुछ संस्कार मुझ आत्मा को फैमिली से मिल रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा पावरफुल फैक्टर है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस या फैमिली में जिनके साथ हम रहते हैं, ये किसी की आदतें किसी के संस्कार हमें मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ संस्कार पास्ट बर्थ से लाए, कुछ संस्कार परिवार से मिले, कुछ संस्कार वातावरण से बने, राइट, एनवायरमेंट, जो आपने कहा जैसा संग वैसा रंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सेट ऑफ संस्कार है वो संस्कार जो मैं आत्मा अपनी विल पावर से क्रिएट करते हो। सेम पेरेंट्स सेम वातावरण में भी दो आत्माएं एक अलग तरह से संस्कार क्रिएट करेंगे।
1: विल पावर में पिछले जन्म का ले क्या है।
0: विल पावर तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, बीइंग शक्ति पावर।
1: तो किसी में कम किसी में ज्यादा क्यों है?
0: किसी में कम किसी में ज्यादा क्योंकि कौन कम यूज कर रहा है कौन ज्यादा, किसी में कम शांति किसी में ज्यादा, किसी में कम गुस्सा किसी में ज्यादा।
1: कम यूज करना मेरे हाथ में।
0: आप गुस्से को यूज करते हैं या शांति को यूज करते हो किसके हाथ में?
1: वो तो मेरे नेचर पे है ना।
0: हाँ, पर वो किसके यूज
1: करने? मेरे पिछले जन्म के संस्कारों से मेरा नेचर बना, एक पैटर्न बना।
0: और आज आप जो चूज करेंगे वो आप बन जाएंगे। इसीलिए उसने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि आप कंपैशनेट हैं या क्रूअल हैं, आप जेनरस हैं मतलब उदारचित हैं या कंजूस हैं, ये सब कुछ आपकी चॉइस है। कोई आपको फोर्सफुली ये बना नहीं सकता, ना इस रास्ते ना उस रास्ते। वो भी वो लाइन बहुत ब्यूटीफुल थी, ना कोई गलत रास्ते आपको लेकर जा सकता है, ना कोई अच्छे रास्ते भी आपको लेकर नहीं जा सकता।
1: वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आवरसेल्फ लर्नड और इग्नोरेंट।
0: हाँ, मतलब ज्ञानी बनना है। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान है चारों तरफ उस ज्ञान को यूज करना है, ज्ञानी बनना है, लर्नड और इग्नोरेंट अज्ञान।
1: तो मैं तो यूजुअली बड़ों से पूछता हूँ कि डिसीजन, तो व्हाट अबाउट दैट।
0: हम लोगों से राय ले सकते हैं ना, डिसीजन फाइनली किसका होता है? हमारा अपना होता है। संस्कार, आज एक परिस्थिति आई, आपको उदारचित होकर उस परिस्थिति में कुछ करना है या कंजूस होना है, किसकी चॉइस है? कंपैशनेट या हेटरेट, किसी के लिए रहम करके उसको फॉरगिव करके कुछ करना है या उससे जीवन भर नफरत करनी है, ये किसकी चॉइस है? इतना ज्ञान जो मिला उस ज्ञान को जीवन में यूज करना है या अभी भी अज्ञानवश चलना है, किसकी चॉइस है? सर, ये हर स्टेप पे मुझ आत्मा की अपनी चॉइस है। एंड मुझे तो लास्ट लाइन बहुत ब्यूटीफुल लगी, ना इस रास्ते ना उस रास्ते, कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता। गलत रास्ते भी कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता, अच्छे रास्ते भी कोई जबरदस्ती लेके नहीं जा सकता, वो भी हर आत्मा की अपनी चॉइस होगी।
1: स्कूल में हम लोग कभी कॉफी पीने जाते थे फ्रेंड्स, मतलब हम लोग सात आदमी हैं तो छह के छह सिगरेट पीते थे। मैं अकेला नहीं पीता था। लेकिन धीरे धीरे धीरे नहीं नहीं नहीं करते, मतलब कॉलेज में जाने के बाद फिर मैंने भी शुरू कर दिया। लेकिन क्यों, मेरी डिसीजन थी, वो रास्ते पे वो लोग नहीं लेके गए, असर नहीं पड़ा। संघ का रंग तो आपने कहा था,
0: आपने कहा सात लोग थे।
1: हाँ,
0: छह लोग सिगरेट पीते थे।
1: मैं तो नहीं पीता,
0: मैं नहीं पीता था। कितने साल?
1: सालों नहीं पीता।
0: फिर भी कितने साल?
1: चार पांच साल।
0: चार पांच साल, तो 5 साल भी तो वही संघ था। 5 साल तो कोई छोटा नंबर नहीं है ना, 5 दिन नहीं है, 5 साल। 5 साल भी वही संघ था, 5 साल भी वो लोग वही रोज कर रहे थे, लेकिन 5 साल नहीं किया। वो कौन था आत्मा? हम ही थे। फिर सडनली एक दिन आत्मा ने सोचा, अब तो हम कॉलेज में पहुंच गए, अब तो करने में कुछ गलत नहीं है, स्कूल हो गया पूरा, सब हो गया, अब मुझे आत्मा ने चूज किया वो करना। संग में तो वो चीज पहले भी थी, अब वो आत्मा ये भी हो सकती है, अब ऐसा भी सीन आ सकता है कि उसके बाद अगले 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें से कोई नहीं पीता।
1: हाँ।
0: ये भी हो सकता ना,
1: ऐसा भी हो सकता।
0: पहले 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें सब ले रहे हैं, तो भी आपने नहीं लिया, वो भी आपकी चॉइस थी। उसके बाद आपने लेना शुरू किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 साल आप 7 लोगों के साथ बैठे जिसमें से कोई नहीं ले रहा था, आप अकेले। ये हुआ सी?
1: ये हुआ, मेरे भाई बहन रिश्तेदार फैमिली ब्रदर कोई नहीं पीता था, मैं अकेला बाहर जाके पी गया था।
0: सिंपल है ना, तो फिर वो संघ का रंग क्यों नहीं लगा?
1: हाँ, उनको क्यों नहीं लगा?
0: उनको नहीं,
1: वो संघ का रंग मुझे नहीं लगा और उनको मेरा नहीं लगा ना, मेरे छोटे भाई वगैरह।
0: अपने को ही देखे कि अगर हम ब्लेम मोड में चलेंगे, विक्टिम मोड में चलेंगे, तो फिर तो हमारे पास एक्सक्यूजेस देने के लिए बहुत सारे हैं, उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। लेकिन फिर कितने लोग हमारे आसपास हैं जिनके बहुत ब्यूटीफुल संस्कार हैं, फिर उनकी वजह से हमें वो वाला रंग क्यों नहीं लगता? इन्फ्लुएंसेस सारे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वाइब्रेशन सारी है, एनर्जी सारी है हमारे चारों तरफ। ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव है, हमारे चारों तरफ प्योर पॉजिटिव एनर्जी भी है। फाइनली मैं आत्मा चूज करती हूँ, हर स्टेप पर, हर रोज, हर क्षण, सब लोगों के बीच रहते हुए। हो सकता है आपके आसपास कोई गुस्सा नहीं करता था, फिर भी आप करते थे। हो सकता है आज आपके चारों तरफ लोग गलत तरह से बात कर रहे हैं, फिर भी आप शांत रहेंगे। दोनों हो सकता है ना। ये सिर्फ फिजिकल आदत के लिए नहीं है कि सिर्फ सिगरेट या खाना पीना या ऐसा कुछ, लेकिन व्हाट अबाउट सूक्ष्म संस्कार भी, वो भी तो हो सकता है।
1: तो मैंने नोट किया सिस्टर, अगर माँ बाप एक्सट्रीम गुस्से वाले हैं तो उनकी औलाद में से मैंने किसी को शांत नहीं देखा कभी।
0: बिकॉज पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मात पिता का संस्कार बच्चे पर माँ के गर्भ में पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वी कैच वाइब्रेशंस ऑफ पीपल। लेकिन वो बच्चा, वो आत्मा, दो चीजें हैं उसके पास। एक, उसके पास उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। अगर उसका पूर्व जन्म का संस्कार शांति का बहुत स्ट्रांग हो, सपोज उस घर में कोई संत आत्मा आई है, हो सकता है ना, मतलब जिसका शांति का संस्कार ऑर्डिनरी स्ट्रांग नहीं, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है,
1: औरों को भी ठीक करने आई हो।
0: हाँ, ठीक है। तो वो शांत स्वरूप आत्मा जो बहुत, मतलब उसने इतने साल एक्सट्रीम साइलेंस में, सपोज कोई सन्यासी आत्मा हो जिसने तपस्या की है, इतने साल मौन में रहे हैं, साइलेंस में रहे हैं, वो आत्मा इस परिवार में आ जाए जिसमें घर में लोग एक्सट्रीम गुस्से वाले हैं, ठीक है। अब उस गुस्से का संस्कार का वाइब्रेशन इस आत्मा के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा अपनी शांति की स्थिति में एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर इस घर में एक ऐसी आत्मा आती है जिसके अंदर पीसफुल भी है लेकिन गुस्से का भी संस्कार है, दोनों संस्कार है, मॉडरेट जिसको हम कहेंगे, तो इस संस्कार का जो गुस्से का परिवार का है उसका इन्फ्लुएंस पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी वो जो बच्चा आया है वो उसकी चॉइस है, अगर बचपन में नहीं तो थोड़े बड़े होने के बाद, कि हु डू आई वॉन्ट टू बी। व्हेन अ चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, इट्स नॉट यूजिंग इट्स ओन चॉइस, इट्स ओनली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इसलिए पेरेंट्स के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आत्मा गर्भ में है एंड जब आत्मा बड़ी हो रही है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो आत्मा अपनी चॉइसेस नहीं यूज करती बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज ही नहीं है अभी। उस समय उसकी इन्फ्लुएंस होने की स्थिति बहुत ज्यादा है, गेट्स वेरी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बट वट एवर। सी, एक बच्चा क्या होता है, आप बच्चे को बोलो ये दिन है, वो सीख जाता है ये दिन है,
1: 100 बार बोलते हैं फैन है, ये लाइट है,
0: लेकिन
1: ये...
0: जो आप सिखाएंगे वही वो सीखेगा।
1: अगर मैं फैन को बोलूंगा ये बेड है, बेड है, बेड है,
0: तो वो बेड ही सीखेगा। हाँ, वो बेड ही सीखेगा। मतलब दैट इज द एज ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड ना, दैट इज द एज ऑफ बिकमिंग व्हाट यू आर टॉट. यू बिकम दैट
1: लेटर ऑन यू चेंज. नो
0: लेटर ऑन यू चेंज.
1: कभी कभी ऐसा होता है कि आई डोंट लाइक व्हाट माय पेरेंट्स टॉट.
0: ब्यूटिफुल. दिस इज इट.
1: है ना.
0: सी दिस इज इट. लेटर ऑन यू हैव द पावर.
1: बिकॉज़ आई सी कि मेरे डैडी ने ऐसा बोला था एक कोई किसी एक पत्थर मारे तो तुम 10 मारो. लेकिन उनका मैंने ये देखा इनके लॉसेस हो गए या बिजनेस इनका ये हो गया और कोई बात नहीं करता है इतना इनका बुरा हाल है. ये देखकर आत्मा सीख सकती है ना.
0: नहीं भी देखती ना अगर सपोज खुद को आत्मा को कम्फर्टेबल नहीं लगता. लेट्स से स्थूल संस्कार कि आपके घर में संस्कार है तीखा खाने का सपोज. तो डैडी ने भी तीखा खाया मम्मी ने भी तीखा खाया बचपन से आपको तीखा खिलाया भी. लेकिन हो सकता है कि थोड़े साल में आपको लगे मुझे ये पसंद नहीं है.
1: आई लव दैट वर्ड आपने जो बोला ना. कोई आत्मा अनकंफर्टेबल फील करती है.
0: अनकंफर्टेबल.
1: मेरे घर में मेरे बच्चे जो नॉन वेजिटेरियन है उनका बच्चा खा नहीं सकता है नॉन वेज. वो अंडा उसको बोलते खा खा खा चिड़ते थूक देता है.
0: राइट.
1: उसको छुपा के राइस में थूक देता है.
0: पेरेंटल संस्कार स्ट्रांगली नॉनवेज खा रहे. ठीक है. आत्मा आई. अब देखो इस केस में क्या है. आत्मा जब गर्भ में थी तो भी उसको नॉनवेज का टेस्ट मिला है कॉन्स्टेंटली क्योंकि मदर वो ही खा रही है. लेकिन इस केस में वो आत्मा का जो पूर्व जन्म का संस्कार है वो बड़ा स्ट्रांगली वेजिटेरियन होगा. सपोज वो आत्मा पूर्व जन्म में कोई ऐसी फैमिली से हो जो मतलब अपने घर में ना आने दे, देखे भी ना सूंघे भी ना, ना जो बहुत जिसको
1: But
0: हम कहते हैं
1: लव्स एनिमल्स. प्यार करता है बड़े बड़े जिससे आप और मैं डर जाए उसके जाके हाथ मुंह में डालता है.
0: इसी में तो समझ में आता है ना पास्ट बर्थ संस्कार क्या है. वो कौन सी आत्मा है. यू नो व्हेन वी दिस लाइन नो दिस पॉइंट ऑफ नॉलेज की ये आत्मा कौन सी है क्या संस्कार लेकर आई है ये आत्मा को एक्सेप्ट करने में बहुत इजी कर देता है.
1: सीखने को मिला ये वर्ड अनकम्फर्टेबल.
0: अनकम्फर्टेबल.
1: सो मेनी टाइम्स आई फील कि ये सब तो कर रहे हैं बट आई एम अनकम्फर्टेबल इन डूइंग दिस.
0: आप ये देखो ना अभी वो तो छोटा बच्चा है ना सपोज 1-2 साल का है. ठीक है. हम जैसे अभी बड़े हैं सपोज हमने इस जीवन में कभी नॉनवेज ना खाया हो एंड हमें अंदर से इनग्रेन्ड उस बात से जैसे कि वी जस्ट नॉट कम्फर्टेबल विद इट. बिल्कुल भी. ठीक है. हम स्मेल भी नहीं कर सकते देख भी नहीं सकते जहां कोई खा रहा है वहां हम बैठ नहीं सकते. सपोज ये हमारी जीवन है 60-70 साल. ठीक है. सपोज व्हेन वी आर एट द एज ऑफ 70 किसी ने हमें जबरदस्ती खिलाया या जैसे आपने कहा मिक्स करके छुपा के उसको खिलाया माइंड और बॉडी रिजेक्ट कर देगा उस चीज को. अब जब हम 70 साल के हैं और हमें किसी ने खिलाया तो हमें नॉलेज है हमने रिजेक्ट कर दिया. 1 साल में वो आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसने नया कॉस्ट्यूम लिया. अब वो बोल नहीं सकता बता नहीं सकता कि उसके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है क्या कंफर्टेबल है क्या नहीं कंफर्टेबल है. लेकिन देखो वो पास्ट का वेजिटेरियन संस्कार इतना पावरफुल है कि वो उसको इतनी यंग एज में रिजेक्ट कर देता है. अब इसका फ्यूचर इस आत्मा का ही दोनों तरफ जा सकता है. वी हैव सीन बोथ द केसेस. अगर ये आत्मा बहुत पावरफुल है इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है. ठीक है. तो ये आत्मा विल स्टिक टू इट्स वेजिटेरियनिज्म फॉर अ लाइफ टाइम. विल स्टिक टू इट कि चाहे कोई कुछ भी बोले चाहे कोई कुछ भी करे. दिस डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द सोल. इसीलिए बीइंग शक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी सारे संस्कार आत्मा की पावर पर डिपेंडेंट है. अब अगर ये आत्मा पावरफुल है ये जीवन में कभी नहीं खाएगी. अगर ये आत्मा थोड़ी सी इन्फ्लुएंस होने वाली है तो फिर धीरे धीरे धीरे ये वातावरण ये पेरेंट्स ये फ्रेंड्स जैसे हम स्कूल में जाएंगे सब फ्रेंड्स खाएंगे सब बोलेंगे तुम कैसा है तू नहीं खाता है इतना कमजोर इतनी अच्छी चीज नहीं खा. यू नो दिस इज हाउ संग का रंग लगता है. देन दैट विल बी द पीरियड फॉर दैट सोल.
1: नहीं हम लोग को कैसे सिखाया था. अरे हम तो शेर है हम तो वो हड्डी तोड़ते हैं तू तो घास फूस वाला कमजोर.
0: हाँ लेकिन ऐसे सुनने के बाद भी इट विल ऑल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ दैट सोल एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल. हम चूज करेंगे.
1: नहीं सिस्टर बट इफेक्ट कैसे करता है. देखो वो बोलता शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा. ऐसी ऐसी लाइनें हम स्कूल में सुनते.
0: लाइनें सुनना लाइनें पढ़ना लेकिन लाइन कितनी इफेक्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा की चॉइस. इफेक्ट किसको करता है. आपकी बात मुझ पर इफेक्ट करे मीन्स यू आर मोर पावरफुल देन मी, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड।
1: एक एग्जांपल, हम लोग शूटिंग में इधर उधर फ्रेंड्स बैठते थे तो सब मिलके किसी जो बाहर जावा नहीं रहता था एक्टर या जो भी आदमी उसके बारे में गॉसिप गॉसिप गॉसिप ऐसा क्या बोलते जाते थे।
0: right.
1: जैसे वो आया
0: बहुत मीठा मीठा
1: सब मीठा मीठा तो बिगिनिंग में मुझे अजीब लगा, लेटर ऑन फिर मैं करते करते 30-40 साल में साथ मैं भी करने लगा, इतना ज्यादा करने लगा कि एंजॉय करने लगा। लेकिन उसके बाद सडनली आज कोई बैठ के इस तरह करे तो मैं उठ जाता हूँ, मतलब कान में दर्द होता है। जो आपने शब्द अनकंफर्टेबल यूज किया ना वो मुझे इतना अच्छा लगा, नाउ आई फील वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस।
0: यस दिस इज इट,
1: आई नाउ वेरी फील वेरी अनकंफर्टेबल कि कोई सिगरेट पी रहा है मेरे पास।
0: हाँ, जबकि खुद ली थी ना,
1: लेता तो आई वॉज अ स्मोकर।
0: हाँ तो खुद लिया ना, एक समय था जब नहीं लिया, फिर प्रभाव में आकर चूज किया, फिर लिया, लेकिन वो हमारा संस्कार नहीं था तो जब छूटा तो अब उसको बिल्कुल नहीं ले।
1: गॉसिप वाला मेरा नहीं था, यू मीन टू से संस्कार
0: आपने कहा ना पहले नहीं था।
1: हाँ, स्कूल में कॉलेज में नहीं था।
0: दिस इज ऑल, ये हमारी प्रोग्रामिंग है सारी। इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इतना मजा आता है इसको देखने के।
1: स्कूल कॉलेज में कोई बोलता तो मैं बोला किसी के पीछे क्यों बोल रहे हैं हम लोग।
0: हाँ।
1: मैं मम्मी को भाई को बहनों को भी बोलता, व्हाई डू वी टॉक लाइक दैट।
0: राइट,
1: लेकिन फिर बाद में खुद बोलने लग गया।
0: तो संस्कार नहीं था, संस्कार बना, फिर संस्कार छूटा। तीनों फेजेस किसके हैं?
1: मुझात्मक
0: है। संस्कार गॉसिप का नहीं था, संस्कार गॉसिप का बना, संस्कार गॉसिप का छूटा, ये मेरे संस्कार थे। पहले आपने कहा घर में लोग गॉसिप करते थे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, संका रंग नहीं पड़ा। फिर शूटिंग में या फ्रेंड्स में बैठे वो लोग करते थे, मैं भी करने लगा, मतलब मैं प्रभावित होकर मैंने भी अपना वो संस्कार बना लिया। आज वो स्टेज है कि आसपास अभी भी तो लोग करेंगे ही ना, वो तो जो जहां बैठे हैं लोग करेंगे, लेकिन हमने अपने संस्कार को चेंज कर दिया। सी दैट इज वाई दैट लाइन इज सो ब्यूटिफुल ना, ओनली एंड ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु यू आर ओनली। इसको अगर हम पकड़ लें, दिस ओन वन लाइन विल मेक अस पावरफुल। क्योंकि आज तक हमने बहुत इजिली कहा क्या करे क्या करे, घर पे ऐसे था, माहौल ऐसे था, टीवी ऐसा है, मीडिया ऐसा है, बातें ऐसी है, देर इज नो डिनाइंग। 20th
1: सेंचुरी है, ये सेंचुरी है, मॉडर्न लाइफ है, दुनिया है।
0: अब हमें ये चेक करना है, जैसे जिस जैसे आपने अपने ग्रैंड चाइल्ड का बताया, आप सिर्फ आने वाले समय में इस आत्मा की जर्नी को देखेगा कि ये आत्मा किस डायरेक्शन में कैसे जाती है। और इसीलिए पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अ रिलेशनशिप कि हमने पैदा किया, खिलाया, बेस्ट स्कूल में भेजा, बेस्ट करियर किया, अच्छे घर में शादी कर दी, दैट्स व्हाट वी लुक एट एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने इसको क्या प्रॉपर्टी दी, हमने क्या इनहेरिटेंस अपने बच्चों को दी, हमने बेस्ट नॉलेज पे, जो बेस्ट चीज एक पेरेंट अपने बच्चे को देता है वो है उसके संस्कार। बेस्ट
1: संस्कार हम कैसे देंगे
0: फिर? हम संस्कार नहीं देंगे बच्चे को,
1: संस्कार तो लेके आया वो।
0: संस्कार लेकर आया, लेकिन अब हम उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं?
1: हमारे हम अब हिला भी दे तो उसके ओरिजिनल संस्कार हम कैसे हिला?
0: ओरिजिनल संस्कार तो किसी आत्मा के भी नहीं हिला सकते।
1: आत्मा के संस्कार नहीं बोलो, जो पास्ट लाइफ में जो काम,
0: पास्ट लाइफ के संस्कार हिलते हैं ना। देखो जैसे आपने कहा अभी आपका ग्रैंड चाइल्ड इस समय वो वेजिटेरियन है, मतलब पैदा होते ही वो नॉनवेज को रिजेक्ट कर रहा है, ये हम स्थूल चीज देख रहे हैं। इसी इक्वेशन को संस्कार पे भी अप्लाई करना, जो आदत वो संस्कार। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल ये डिसाइड करेंगे कि वो आत्मा किस डायरेक्शन में जाएगी। वी हैव सीन बोथ द केसेस, कुछ बच्चे हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए, कि उनके पेरेंट्स कितना भी बोले, डांटे, फोर्स करे, फ्रेंड्स मजाक उड़ाए, नहीं मतलब नहीं, हम नहीं लेंगे उसको, बट देन द सोल हैज टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर दैट। एंड कुछ बच्चे वो लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने खिलाना शुरू कर दिया, मिला के खिलाना शुरू कर दिया, टेस्ट बैठ गया, फिर फ्रेंड्स के साथ गए, पार्टी में गए, तो उनका संस्कार जो वो लेकर आए थे वो वेजिटेरियन का था, लेकिन वातावरण के प्रभाव से दूसरा संस्कार उन्होंने अक्वायर किया। दिस इज ऑल अ जर्नी ऑफ अक्वायरिंग संस्कार।
1: कि जब बच्चे को बहुत भूख लगती है तो उसकी मेड क्या करती है, फिश वगैरह चावल में छुपा के, क्योंकि भूख लगी है वो खा तो लेता है लेकिन बाद में बहुत गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ा हो जाता है।
0: सी वी हैव गिवन द सोल समथिंग दैट ही इज नॉट कम्फर्टेबल विद।
1: पौने दो साल का बच्चा इतना उसको इफेक्ट होता है,
0: वाइब्रेशन
1: एंग्री
0: वाइब्रेशन
1: लड़ने लगता है, लोग बोलते ये क्यों चिड़ रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने बोला इसलिए हो रहा है।
0: अगर वो पेरेंट्स आज रियलाइज करे ये आत्मा के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, उसको ये नहीं दो, उसको बहुत, वो बच्चा बता ही नहीं सकता कि उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है अंदर। जिस चीज के लिए बच्चा कंफर्टेबल नहीं है उस बच्चे को वो नहीं देना है। इफ इट्स नॉट, सी सर्टेन थिंग्स विच आर गुड फॉर द चाइल्ड, दिस इज वेयर कम्स द पावर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इज द पावर टू डिसर्न व्हाट इज गुड व्हाट इज नॉट, what is right, what is wrong, what is true, what is false. आज हम क्या कहेंगे, नहीं मतलब नॉर्मल इवन नॉन वेज के लिए नहीं खिलाना ही है, इसमें हेल्थ है, इसमें हम परख नहीं रहे कि क्या ये चीज पहली बात आत्मा के लिए शरीर के लिए अच्छी है। अच्छा हम खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं खाता है तो इसमें तो उसका फायदा ही है ना।
1: क्यों?
0: वी नो कि वेजिटेरियन का मन और बुद्धि और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: आपको मालूम, वो लोग तो कहते हैं कि मच्छी खाएगा तो इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी।
0: परखने की शक्ति इसीलिए चाहिए ना, परखने की शक्ति। इट्स लाइक एक आत्मा आपके घर एक ब्यूटीफुल संस्कार लेकर आई है। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे यहीं पे आई मेट अ चाइल्ड, वो छोटा 3-4 महीने का, उसकी आंखों में दिखाई देता था कि कितनी प्योर और कितनी पावरफुल आत्मा है। एंड बस एक मिनट बाद आई मेट हर फादर, वो 3 महीने का बच्चा, मैंने जरूर उसको एक ही लाइन कही, मैं कहा आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके घर एक बहुत पावरफुल आत्मा आई है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रास्ते लेकर जाते हैं। पेरेंट्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम देखते हैं कुछ बच्चे छोटे, बहुत छोटे, 3 साल के 4 साल के सेंटर पर आ जाते हैं, आश्रम पे, ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि वो आत्मा का पूर्व जन्म का संस्कार है, इस जन्म का नहीं होता वो संस्कार। पूर्व जन्म में अगर संस्कार आत्मा का मेडिटेशन करने का था, स्पिरिचुअलिटी का था, तो वो किसी के साथ आ जाती थी। मी आई वेंट टू द सेंटर एज अ चाइल्ड, बट व्हेन आई वेंट टू द सेंटर एज अ चाइल्ड आई वाज स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग दैट टाइम। I went to the center as a child with my grandmother. I mean nursery, first standard, second standard, ये एज में मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता था वहां जाने के बाद। 20 years बीच में नहीं गए, मतलब आप स्वे हो जाते हैं ना दूसरी तरफ कि किसी ने कहा नहीं जाना, ये नहीं, ऐसे नहीं, तुम अभी पढ़ो, तुम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस रास्ते नहीं जाना, ये नहीं करना, हम बह जाते हैं दूसरी तरफ। दैट्स माई वीकनेस, तो उस तरफ बह गए, लेकिन फिर वो संस्कार तो था ही ना नीचे। देन अगेन यू कम बैक टू दिस साइड, बट देन आई फील आई लॉस्ट 20 years इन बिटवीन। सो दिस इज द जर्नी ऑफ एवरी सोल। जो आत्मा के लिए कंफर्टेबल है और अगर वो चीज अच्छी है, उस आत्मा को करने देना चाहिए, वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट सोल।
1: बट ये 20 years लॉस्ट नहीं है, इसका भी आपको शायद एक्सपीरियंस होके देखना था।
0: ऑफकोर्स अब तो हम कहते हैं कि हर चीज ही एक्यूरेट हो रही है जो हो रही है, बट वॉट वी फील इज कि अगर आपके घर के बच्चे अपने पूर्व जन्म से कोई संस्कार लेकर आए हैं जिसके अंदर उनके लिए वो सही है, वो प्योरिटी है, वो सात्विकता है, कोई भी एक चीज ऐसी है, आप अपने प्रेजेंट संस्कार या वातावरण को देखकर उस बच्चे को उसकी सात्विकता से दूर नहीं करना चाहिए।
1: उस बच्चे को उसकी सात्विकता से दूर नहीं करना चाहिए और पूर्व जन्म के संस्कार पे एक छोटा मेडिटेशन करें।
0: श्योर, सिट बैक। Let's sit back comfortably. अपने आप को देखें और अपने आसपास सबको देखें। हर आत्मा एक नेटवर्क ऑफ संस्कार है। कितने सारे संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, माता पिता से मिले संस्कार, परिवार से मिले संस्कार, वातावरण से मिले, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुझ आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार। आई द पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा, मैं चूज कर

0: दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: टुना, ओ टुना।
2: क्या रे,

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

स्वर्णिम भारत के पूर्वी तट की ओर जब हम चलते हैं, एक विशेष प्रदेश जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और जिसके मिट्टी को सागर की लहरें छूते हुए कई सारी महान व्यक्ति विशेष और कलाकारों से राज्य श्रृंगारित हुआ है। आइए इस शुभ दिन पर इस राज्य की महानता की गाथा का वर्णन करते हुए इसके ऐतिहासिक तथ्य, भौगोलिक तथ्य और संस्कृति के बारे में आप सभी को अवगत कराते हैं। आइए बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर।

झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के इस प्रदेश का इतिहास बहुत ही मनोरंजक है। उड़ीसा राज्य प्राचीन समय में कलिंग के नाम से विख्यात था। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग विजय करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, जिसका कलिंग के निवासियों ने जमकर सामना किया। सम्राट अशोक ने कलिंग तो जीता, परंतु युद्ध के भीषण संहार से सम्राट के मन में वैराग्य पैदा हो गई और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग फिर से स्वाधीन हो गया। इसके बाद ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खारावेल राजा के अधीन कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, पर खारवेल की मृत्यु के बाद उड़ीसा की ख्याति लुप्त हो गई। चौथे शताब्दी में विजय पर निकले समुद्रगुप्त ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और इस प्रदेश के 5 राजाओं को पराजित किया। बाद में सन 610 में उड़ीसा पर शशांक नरेश का अधिकार हो गया और शशांक के निधन के बाद हर्षवर्धन ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। सातवीं शताब्दी में उड़ीसा पर गंगवंश का शासन रहा। सन 795 में महाशिवगुप्त यजाति द्वितीय ने उड़ीसा का शासन भार संभाला और उड़ीसा के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने कलिंग, गनगोड़ा, उत्कल और कौशल को मिलाकर खारावेल की भांति विशाल साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं शताब्दी के लगभग मध्य से 1592 तक उड़ीसा 5 मुस्लिम राजाओं द्वारा शासित रहा। मुगलों के पतन के पश्चात उड़ीसा पर मराठों का अधिकार रहा। सन 1803 में ब्रिटिश राज से पहले उड़ीसा मराठा शासकों के अधीन रहा। अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, जिसे अब उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा स्टेट फॉर्मेशन।

स्वतंत्रता के बाद ओडिशा तथा इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी। रियासतों के विलय संबंधी आदेश 1949 के अंतर्गत जनवरी 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों का ओडिशा राज्य में संपूर्ण विलय हो गया। ओडिशा के कलिंग, उत्कल और उत्तरचे से कई प्राचीन नाम है। कला द्वारा हम किसी भी प्रदेश की पहचान करते हैं। जानते हैं कुछ यहाँ के कला के बारे में। ओडिशा ने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया है। भित्ति चित्रों, पत्थर व लकड़ी पर नकाशी देव चित्र पट्ट चित्र कला के नाम से विख्यात है और ताड़ पत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं आज भी कायम है। यहाँ हस्तशिल्प कलाकार चांदी में बेहद महीन जाले की कटाई की अलंकृत शिल्प कला के लिए विख्यात है। जनजातीय इलाकों में कई प्रकार के लोक नृत्य है। मादल व बांसुरी के संगीत गाँव में आम है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी 700 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है।

मूलतः ये ईश्वर के लिए किया जाने वाला मंदिर नृत्य था। नृत्य के प्रकार, गति, मुद्राएं और भाव भंगिमाएं बड़े मंदिरों की दीवारों पर, विशेषकर कोणार्क में, शिल्प व उभरी हुई नक्काशी के रूप में अंकित है। मयूरभंज और सरायकेला प्रदेशों का छऊ नृत्य, जो कि मुखौटे पहने कलाकारों द्वारा किया जाता है, ओडिशा की संस्कृति की एक अन्य धरोहर है।

आइए अभी जानते हैं कुछ साहित्य के बारे में। सारला दास ही उड़िया के प्रथम जातीय कवि और उड़िया साहित्य के आदिकाल के प्रतिनिधि हैं। कटक जिले की झंकड़वासिनी देवी चंडी सारला के वर प्रसाद से कवित्व प्राप्त करने के कारण सिद्धेश्वर परिड़ा ने अपने को शूद्र मुनि सारला दास के नाम से प्रचारित किया। इनके तीन कृतियां उपलब्ध हैं, जैसे कि विलंका रामायण, महाभारत, चंडी पुराण। ये हम आदि युग की बात कर रहे थे, अभी मध्य युग की ओर चलते हैं। इस युग में पंच सखाओं के साहित्य का प्रधानता है। ये पंच सखा है बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास तथा अनंत दास और अच्युत अनंत दास। चैतन्य दास के साथ सख्य स्थापित करने के कारण ये पंच सखा कहलाए। इनके उपास्य देवता थे पुरी के जगन्नाथ जी, जिनकी उपासना शून्य और कृष्ण के रूप में ज्ञान मिश्रा, योग योग प्रधान, भक्ति तथा काय साधना द्वारा की गई। पंच सखाओं में से प्रत्येक ने अनेक ग्रंथ लिखे। 16वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में दिवाकर दास ने जगन्नाथ चरित्रमृत के नाम से पंच सखाओं के जगन्नाथ दास की जीवनी लिखी तथा ईश्वर दास ने चैतन्य भागवत लिखा। सालवेग नामक एक मुसलमान भक्त कवि के भी भक्ति रसात्मक अनेक पद प्राप्त हैं। इस युग में शिशु शंकर दास, कपिलेश्वर दास, हरिहर दास, देव दुर्लभ दास तथा प्रताप राय जैसी भी महान कवियों ने अपने अपने रचना दिए हैं। आइए सुनते हैं भक्त सालवेग जी के द्वारा रचित एक भजन।

अभी बात करते हैं रीति युग के बारे में। रीति युग में 1651 से लेकर के 1703 तक कवि दीन कृष्ण दास ने बहुत सारे काव्यों का रचना किया। साथ ही साथ कवि उपेंद्र भंज, जिनको रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं, इनके कारण ही रीति युग को भंज युग भी कहा जाता है। इनकी अनेक प्रतिभाशाली कृतियों ने उड़िया साहित्य में इनको सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित किया। भंजकालीन साहित्य के बाद उड़िया साहित्य में चैतन्य प्रभावित गौड़ीय वैष्णव धर्म और रीतिकालीन लक्षण दोनों का समन्वय देखने में आता है। इनमें प्रधान है सचिदानंद कवि सूर्य, साधु चरण दास, भक्त चरण दास, अभिमन्यु सामंत सिहार, गोपाल कृष्ण पटनायक, यदुमणि महापात्र तथा बलदेव कवि सूर्य आदि। इस क्रम में प्रधानत और दो व्यक्ति पाए जाते हैं, जिनका नाम है ब्रजनाथ बड़जेना और भीम भोई। ब्रजनाथ बड़जेना ने गुंडीचा विजय नामक एक हिंदी काव्य भी लिखा था और भीम भोई जन्मांध थे। वो जाति में आदिवासी थे, वो निरक्षर थे, लेकिन उनके रचित स्तुति चिंतामणि, ब्रह्ममणि रूपण गीता और अनेक भजन भी पाए जाते हैं। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज के अंदर कुसंस्कार कुरीति के विरुद्ध बहुत सारी कविताएं रचना की है। आइए यहाँ पर सुनते हैं संत कवि भीमा भोई जी के द्वारा रचित एक भजन, और जिस भजन के अंतर्गत वो हमें ये सूचित करते हैं कि भले मेरा जीवन नर्क में हो, लेकिन जगत का उद्धार हो।

0: अभी चलते हैं आधुनिक युग की तरफ। यद्यपि ब्रिटिश काल से ही आधुनिक युग प्रारंभ होता है, किंतु अंग्रेजी का मोह होने के साथ ही साथ प्राचीन प्रांतीय साहित्य और संस्कृत से साहित्य पूरी तरह अलग नहीं हुआ। इस काल के प्रधान कवि राधानाथ राय हैं। आधुनिक युग को कुछ लोग राधानाथ युग भी कहते हैं। अभी बात करते हैं उड़िया उपन्यास सम्राट फकीर मोहन सेनापति जी के बारे में। उपन्यास में ये बेजोड़ हैं। उनकी कृति प्रायश्चित का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। इस काल के एक और प्रधान कवि मधुसूदन जी हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने भक्ति परक कविताएं भी लिखी हैं। इस काल में काव्य, उपन्यास और गल्प के समान नाटकों पर भी लोगों की दृष्टि पड़ी। नाटककारों में प्रधान रामशंकर राय हैं। उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, गीति नाट्य, प्रहसन और यात्रा आदि भिन्न भिन्न विषयों पर रचनाएं की है। राधानाथ युग के अन्य प्रसिद्ध कवि है गंगाधर मेहर, पल्ली कवि नंदकिशोर वल, विश्वनाथ कर, व्यंग्यकार गोपाल चंद्र प्रहराज आदि। इसके उपरांत गोपबंधु दास ने सत्यवादी युग का प्रवर्तन किया। वो अक्सर कहा करते थे,
1: मिसु मोरो देह ए देश माटी रे, देशवासी चले जानतु पिठी रे। मिसु मोरो देह ए देश माटी रे, देशवासी चले जानतु पिठी रे। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोरो मांस हाड़। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोरो मांस हाड़।
0: इसका मतलब यही है कि मेरा तन मन धन सब देश के सेवा के लिए है। पद्मचरण पटनायक, नीलकंठ दास तथा गोदावरी मिश्रा आदि इस युग के प्रधान साहित्यिक थे। इस युग में पद्मचरण पटनायक, कवियत्री कुंतला कुमारी सावत छायावादी साहित्यकार और लक्ष्मीकांत महापात्र हास्य रसिक हैं। सत्यवादी युग के बाद रोमांटिक युग आता है। इसके प्रधान कवि मायाधर मानसिंह हैं। कालंद चरण पाणिग्राही, वैकुंठ नाथ पटनायक, हरिहर महापात्र, शरद चंद्र मुखार्जी, आनंद शंकर राय ने सबुज कवित्व से सबुज युग का श्री गणेश किया। वासंती उपन्यास इनके सम्मिलित लेखन का फल है। इसके बाद प्रति युग या अत्याधुनिक युग आता है। लेकिन यहाँ पर सुनते एक बहुत ही अच्छा गाना, जो गाना हमें ये कहेगा कि उड़ीसा की मिट्टी कितनी अच्छी है। आइए सुनते हैं।

सच्चिदानंद राउत राय इस युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी रचनाओं में पल्ली चित्र, पांडुलिपि आदि प्रधान है। आधुनिक समय में उपन्यासकार गोपीनाथ महांति, कानूचरण महांति, नित्यानंद महापात्र, कवि राधा मोहन गढ़ नायक, शूद्र गाल्पिक, गोदावरीश महापात्र आदि हैं। तो आइए सुनते हैं कवि सच्चिदानंद राउत राय जी के द्वारा रचित मातृभूमि को सम्मान देते हुए ये गीत।

ये गाना यही कहता है, भले मेरा गांव का नाम भूगोल और इतिहास में नहीं है, लेकिन मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है और मैं अपना अंतिम सांस भी इसी गांव में ही लूंगा। 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी अतुल्य भारत, जहां पर हम बात कर रहे हैं अभी ओडिशा राज्य के बारे में। इस अत्याधुनिक युग में ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को पूर्व में काशी भी कहा जाता था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा। प्राचीन काल में हजारों वर्ष तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा। बौद्ध धर्म की तरह जैनों के लिए भी ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश का एक प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल हुए थे। इसी तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार भुवनेश्वर वर्तमान में एक बहुसांस्कृतिक शहर है और इसको टेंपल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म यहाँ उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म की तरह यहाँ जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ भी मिलती है। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं में जैन राजा खारवेल की बनवाई कलाकृतियाँ मिली है। उदयगिरी और खंडगिरी प्राचीन नाम है स्कंदगिरी। इन पहाड़ियों में पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्रसिद्ध चेदी राजा खारवेल जैन मुनियों के निवास के लिए करवाए थे। यहाँ करीबन 1 से 20 गुफाएं तक देखने को मिलती है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं 5वीं सदी से संबंधित हैं। यहाँ पत्थर को काटकर बनाई गई वाराह अवतार की मूर्ति पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक मानी जाती है। गुफा संख्या 4, जिसे रानी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक आकर्षक गुफा है। गुफा संख्या 10 में, जिसे गणेश गुफा भी कहा जाता है, वहाँ गणेश की मनमोहक मूर्ति है। इस गुफा के दरवाजे पर 2 हाथियों को दरवान के रूप में स्थापित किया गया है। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा में शिवलिंग है, जिसकी पूजा स्थानीय लोग आज भी करते हैं। इन 20 गुफाओं के अलावा गिरी शिखर पर ध्वंसावशेष भी दिखते हैं। जन श्रुतियों के अनुसार आज भी इसे अशोक का महल कहा जाता है। आइए थोली के बारे में जानते हैं। थोली भुवनेश्वर के दक्षिण में राजमार्ग संख्या 203 पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां अशोक कलिंग युद्ध के बाद आगमन

पश्चाताप की अग्नि में जले थे। इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया और जीवन भर अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार किया।

अशोक के प्रसिद्ध पत्थर स्तंभों में एक यही है। इस स्तंभ में अशोक के जीवन दर्शन का वर्णन किया गया है। यहाँ का शांति स्तूप भी घूमने लायक है, जो धौली पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है। इस स्तूप में बुद्ध जी की मूर्ति तथा उनके जीवन में संबंधित विभिन्न घटनाओं की मूर्तियां स्थापित है, जैसे कि भुवनेश्वर को टेंपल सिटी कहा जाता है। कुल मिलाकर के 50 ऐसे मंदिर हैं जिसको पर्यटक देखने के लिए आते हैं। उनमें से राजा रानी मंदिर है, जो कि 11वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में शिव और पार्वती की भव्य मूर्ति है। इस मंदिर के नाम से ऐसा लगता है कि मानो इसका नाम किसी राजा रानी के नाम पर रखा गया है, लेकिन एक खास प्रकार के पत्थर से बना है, जिसे राजा रानी पत्थर कहा जाता है। इसी कारण इस मंदिर का नाम राजा रानी मंदिर है। राजा रानी मंदिर से कुछ ही दूर पर ब्रह्मेश्वर मंदिर है और मुक्तेश्वर मंदिर, बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर वहाँ पर है। मुक्तेश्वर मंदिर में परमेश्वर मंदिर भी है, जो कि इस क्षेत्र के पुराने मंदिरों में सबसे आकर्षक है। इसके जगमोहन में जाली का खूबसूरत काम किया गया है और इसमें आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। आइए अभी चलते हैं लिंगराज मंदिर की ओर। इस मंदिर समूह का निर्माण सोमवंशी वंश के राजा जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। यहाँ पर शिव जी के पूजा की जाती है। मंदिरों के अलावा आप यहाँ पर प्लानिटोरियम, चिड़ियाघर, राज्य संग्रहालय भी देख सकते हैं। प्लानिटोरियम जो है पठानी सामंत प्लानिटोरियम के नाम से जाना जाता है। पठानी सामंत जी के बारे में अगर हम बताएं तो पठानी सामंत जी को कहा जाता था महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। पठानी सामंत नाम से वो जाने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के अवस्थिति के बारे में, साथ ही साथ दैनिक, वार्षिक आवर्तन एकदम सटीक रूप से वो गणना कर सकते थे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के सही समय निर्धारित करने में वो माहिर थे, इसीलिए उनको महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी। वो ग्रह नक्षत्रों की दूरता को एक बाम्बू पाइप के माध्यम से नाप के डिस्टेंस बता सकते थे। उनके सारे तकनीकी रिसर्च ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखा है और उस किताब का नाम है सिद्धांत दर्पण। इसमें करीबन 2000 से भी ज्यादा पद्य हैं। उन्होंने बहुत सारे यंत्रों की भी रचना की है, जैसे कि गोल यंत्र, सूर्य घड़ी, शकुदंड, उलम्बी चक्र, मान यंत्र, खगोल यंत्र। सूर्य घड़ी के माध्यम से सूर्य की गति के अनुसार समय निर्धारण करने के लिए सूर्य घड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जाना भुवनेश्वर के बारे में, टेंपल सिटी के बारे में। अभी हम चलेंगे पुरी की ओर, यानी कि जगन्नाथ धाम, भारतवर्ष के चार मुख्य धामों में से एक धाम की ओर।

इस गाने का अर्थ यही कहता है कि भगवान जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा आयोजित होता है तो किस प्रकार से भक्ति में लोग गाना गाते हैं। ये आप सुन रहे थे संबलपुरी लोक संगीत। आइए हम चलते हैं श्री क्षेत्र की ओर, श्री क्षेत्र यानी कि पुरी के ओर। पुरी उड़ीसा प्रांत का एक जिला है। भारत के चार पवित्रतम स्थानों में से एक है पुरी, जहां समुद्र इस शहर के पांव धोता है। 65 मीटर ऊंचा जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ी के आंगन में बना है। चारों ओर से 20 मीटर ऊंची दीवार से घिरे इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। मंदिर के शेष भाग में पारंपरिक तरीके से बना सहन, गुफा, पूजा कक्ष और नृत्य के लिए बना खम्भों वाला एक हॉल भी है। सड़क के एक पार पर गुंडीचा मंदिर के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी का ग्रीष्मकालीन मंदिर भी है। गार्डन हाउस के रूप में प्रसिद्ध गुंडीचा मंदिर एक छोटा मंदिर है, जहां रथ यात्रा के दौरान मूर्तियों को रखा जाता है। आइए जानते हैं अभी पुरी के समुद्री तटों के बारे में। पुरी के समुद्री तटों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बहुत ही आनंददायक होते हैं। पुरी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल मंदिर है। यहाँ पर केवल अनाला नवमी के दिन श्री राधा जी के पवित्र पैरों के दर्शन किए जा सकते हैं। हिंदू नववर्ष की खुशी के लिए कुछ बात। हिंदू नववर्ष की खुशी में यहाँ चंदन यात्रा निकाली जाती है। पूरे भारतवर्ष और विश्व के पर्यटकों के लिए रथ यात्रा आकर्षण के प्रमुख केंद्र है।

ये यात्रा जून माह में आयोजित होती है, जो पूरी रथ यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। श्री जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को वार्षिक अवकाश पर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे मंदिर यानी कि गुंडीचा घर में ले जाया जाता है। रथ यात्रा और नव कालेवाड़ा पुरी के प्रसिद्ध पर्व है। ये दोनों पर्व जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति से संबंधित है। पुरी रथ यात्रा का त्योहार साल में एक बार मनाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए तीर्थयात्री देश के विभिन्न कोने से आते हैं।

रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास में प्रसिद्ध शिव मंदिर लोकनाथ मंदिर भी है। यहाँ के निवासियों में ऐसा विश्वास है कि भगवान राम ने इस जगह पर अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये रही पुरी की बात, लेकिन पुरी से कुछ ही दूरी पर सन टेम्पल यानी कि कोणार्क स्थित है। आइए जानते हैं कोणार्क के बारे में। कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी नरेश नरसिंहदेव प्रथम ने अपने एक विजय के स्मारक स्वरूप करवाया था। 1200 कारीगर 12 वर्ष तक निरंतर लगे रहे। अबुल फजल ने अपने आईन अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर में उड़ीसा राज्य के 12 वर्ष की समूची आय लगी थी। उनका ये भी कहना है कि ये मंदिर नवी शती में बना था। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित एक दंत कथा प्रचलित है कि संपूर्ण प्रकार के निर्माण हो जाने पर शिखर के निर्माण की एक

चली आती थी। बहुत सारे कहानी इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। पुराणों में इस सूर्य मूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य के नाम से किया गया है। कहते हैं कि रथ सप्तमी को सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान कर उक्त मूर्ति प्राप्त की थी। आज भी उस तिथि को वहां लोग स्नान और सूर्य की पूजा करने आते हैं। मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित एक मंदिर भी है। यहां नव ग्रहों वाला अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित मंदिर भी है। आइए अभी कोणार्क से डायरेक्ट हम चलते हैं उड़ीसा के और कुछ प्रमुख शहरों की ओर। अभी चलते हैं राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को नदियां और पर्वतमाला घेरे हुए हैं। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना यहाँ भी स्थित है। यहाँ राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान राउरकेला भी स्थित है, जो कि भारत के NITs में से एक है। अभी बात करते हैं संबलपुर के बारे में। संबलपुर भारत के उड़ीसा प्रांत के एक जिला है। इसका नाम समलेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, जो शक्ति रूपा है और इस क्षेत्र में पूज्य है। संबलपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के बीच स्थित दोनों प्रांतों को जोड़ता है। महानदी के बाएं किनारे पर स्थित यह नगर एकदा हीरों के व्यवसाय का केंद्र था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सूती और रेशमी बुनावट की वस्त्र कारीगरी, इकत, आदिवासी समृद्ध विरासत और प्रचुर जंगल भूमि के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर उड़ीसा के जादुई पश्चिम भाग का प्रवेश द्वार के रूप में सेवारत है। ये राज्य के उत्तरी प्रशासकीय मंडल का मंडल मुख्यालय है, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक और शिक्षा केंद्र है। हीराकुद उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में ईव और महानदी के संगम पर स्थित है। ये स्थान का प्रसिद्धि के कारण हीराकुद बांध है। यह स्वर्ण, धूल एवं हीरा भी प्राप्त होता है। हीराकुद की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हीराकुद बांध संसार के विशालतम तथा सबसे लंबे बांधों में से एक है। आइए बात करते हैं कटक के बारे में। बारावटी किला के बारे में बात करते हैं। महानदी के किनारे बना ये किला खूबसूरती से तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण गंगवंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। युद्ध के समय नदी के दोनों किनारों पर बने किले इस किले की रक्षा करते थे। वर्तमान में इस किले के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी है। 5 एकड़ में फैले इस स्टेडियम में 30,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। कटक जिले में धवलेश्वर द्वीप भी है। इस द्वीप के चारों ओर महानदी है। इस द्वीप को जाने के लिए ज्यादातर नौका या झूला पुल की इस्तेमाल की जाती है। ये झूला पुल एशिया के सबसे लंबा झूला पुल है। अभी आते हैं चिलिका झील के ओर। चिलिका झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। ये भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिलिका झील के नाम से और चिलिका झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अनूप एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में पूरी जिले में स्थित है। ये 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये समुद्र का ही एक भाग है, जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। तो यहाँ पर हमने जाना उड़ीसा राज्य के बहुत सारे पर्यटन स्थलों के बारे में। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

अभी इस खूबसूरत गाने के बाद आइए जानते हैं खान पान के बारे में। चावल ओडिशा का प्रधान भोजन है। पखाल भात यहाँ का एक लोकप्रिय भोजन है। यह भोजन एक दिन पहले के चावल को आलू के साथ तलकर बनाया जाता है। इसके साथ आम, आलू भरता, बड़ी चूरा जो कि एक मसालेदार व्यंजन है, इसके साथ खाया जाता है। साथ ही साथ पाई साग, ये साग उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ छत्तु तरकारी यानी कि एक तीखा भोजन है जो कि मशरूम से बनता है। उड़ीसा में हर खाने में पंचफोरन मिलाने का रिवाज है। ये खास तरह का मसाला होता है जिसे हर भोजन में मिला दिया जाता है। इसे भोजन में मिलाने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ तड़का, डालमा, पीठा तथा नारियल के तेल में पूरी बनाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ उत्पादों के बारे में। यहाँ पत्थर से बने बहुत खूबसूरत सामान मिलते हैं। इन सामानों में मूर्तियाँ से लेकर बर्तन तक शामिल है। पत्थरों से बने वस्तुओं के अलावा सिंक से बने वस्तुएं जैसे कि पेन स्टैंड, कंघी, इस प्रकार सजावटी वस्तुएं भी मिलते हैं। और साथ ही साथ पिपली के हस्तकला भी प्रसिद्ध है जिसको चांदुआ के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं उड़ीसा के त्योहारों के बारे में। इसका एक अनोखा त्योहार अक्टूबर या नवम्बर में मनाया जाने वाला है, बोईता बंदना, जिसमे नौकाओं की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ रज उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व के दौरान घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां नए वस्त्र पहनते हैं और साथ ही साथ झूला में झूलते हैं और उस 3 दिन तक वो कोई भी काम नहीं करते हैं। इस पर्व के दौरान बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाया जाता है। इस पर्व को 3 दिन मनाया जाता है। इसके अलावा होली, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, ईद, रमजान आदि बहुत सारे पर्व इकट्ठे होकर के सभी मनाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति ने उड़ीसा को कई रत्न दिए हैं, उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उड़ीसा ने कई रत्न दिए हैं।

जिनमें प्रमुख है सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास, हरे कृष्ण मेहता, बख्शी जगबंधु। लेकिन आज मैं बात करूंगी दो ऐसे महान देश भक्तों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात करते हैं भारत की किसी भी स्वतंत्रता संग्राम से पहले एक वीर पुत्र ने, जिनका नाम था जय राजगुरु। अंग्रेजों का डट के सामना किया था अपने पाइकों को लेकर के, यानी कि 7000 सेना के साथ। लेकिन अंत में देशद्रोहियों के वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो दिन था 6 दिसंबर 1806 का दिन। जय राजगुरु जी को अमानुषिक तरीके से हत्या किया गया था और वो बन गए हमारे देश के प्रथम शहीद। वो अक्सर कहा करते थे, मैं जीवन दे दूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। इसीलिए उड़ीसा के लोग ये कहते हैं, जइया पछे जीवन देला नुआई नहीं मथा। अर्थात उन्होंने जीवन दे दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस महान देशभक्त के वीरता को न सिर्फ उड़ीसा, पूरा भारत मिलके सलाम करता है।

अभी जानते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने बचपन में ही प्राण न्योछावर कर दिए। वो थे बाजी राउत, जिनका उम्र 13 साल था। वो है भारतवर्ष के सबसे कम उम्र के शहीद। आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाजी राउत का जन्म नीलकंठपुर उड़ीसा में 1925 को हुआ था। वो अपने गांव के पास ब्राह्मणी नदी के नौचालक और प्रजा मंडल पार्टी के स्वयंसेवक थे। रात था 10 दिसंबर 1938। ब्रिटिश सेना वहां पहुंची और बाजी राउत को नदी पार करने के लिए कहा। उस वक्त निडर होके उस नन्हे वीर ने उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी भूमि पर अंग्रेज कदम रख पाए। इस पर गुस्से में आकर एक अंग्रेज सिपाही उन्हें वही गोली मार दी। गहरी चोट आने के बावजूद भी उन्होंने गांव वालों को आगाह किया तथा उसके बाद अपने प्राण त्याग दिया। भारत माता की इस वीर पुत्र को आज हम शत शत नमन करते हैं।

0: तो इस प्रकार हमने जाना ओडिशा राज्य के बारे में, जिस पावन राज्य पर चंडाशोक ने कदम रखते हुए धर्माशोक में परिवर्तन हो गए थे। साथ ही साथ प्रथम शहीद यहीं से पैदा हुआ था और सबसे कम उम्र के वीरत्व का प्रदर्शन करते हुए बाजीराव भी शहीद हो गया था। 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी, अतुल्य भारत, जय हिंद।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हम

पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न टकराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न टकराओ, यारो सूरत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ खाबो का सफर। आज के शो में हम लोग बातें करेंगे एम अक्षर के गीतों के बारे में। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं एम अक्षर वाले, जो आपको आज के शो में सुनने को मिलेगा, वो भी 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, 1952 की तरफ। अनहोनी इस नाम से एक एल्बम आई थी, एक फिल्म आई थी 1952 में, रोशन साहब का संगीत से सजा ये फिल्म। इस फिल्म के गाने जो है तलत महमूद साहब ने गाए थे और राजेंद्र कृष्ण साहब ने इन गीतों को लिखा था। इस फिल्म का एक गाना है जैसे कि ये।

जी हाँ, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। आइए इस गीत को सुनते हैं और राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये गीत आपके लिए अभी कार्यक्रम के शुरुआत में। और दो लाइनें आपको बताना चाहूंगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमें अगर अपने जीवन को संवारना है तो तिनका तिनका उठाने के बाद ही हम अपने जीवन को या अपने घर को सजा सकते हैं, क्योंकि घर किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, घर परिवार से बनता है, कुछ लोगों से बनता है, चाहे उसमें चार हो, पांच हो, दस लोग हो, लेकिन पूरा परिवार को इकट्ठा बना के रखने में एक माँ, एक महिला का बहुत ही अहम भूमिका होता है। और इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मैं दिल हूँ अरमान भरा। हर व्यक्ति के जीवन के, हर व्यक्ति के अंदर दिल है और वो अरमानों से भरा हुआ है, लेकिन उन अरमानों को जब खुशी मिलती है या किसी का सहयोग मिलता है तो वो अरमान पूरे हो जाते हैं। तो आइए इस खूबसूरत गीत को अभी हम सुनेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वाह वाह वाह, क्या गला पाया है, कमा खाओगे प्यारे। रानी साहबा, आप तो वकील साहब को प्राइवेट सेक्रेटरी रख लीजिए अपना। मैं वकालत में रखा है क्या है रानी साहबा, आमा वकील साहब, छोड़ो वकालत और पकड़ो ढोलक, फिर तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन था।

ख्वाबों का सफर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा जो गीत था वो आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं एक और फिल्म की तरफ आपको ले चलना चाहूंगा। जब 50s की बातें हो रही तो 1957 की बात अगर मैं करूं, उस समय एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, शायद आप सभी ने देखा होगा और नहीं देखा हो तो इस फिल्म को जरूर एक बार देखिए, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है इस फिल्म से। ब्लैक एंड व्हाइट जरूर है लेकिन मोटिवेशन बहुत है। दो आंखें 12 हाथ, जी हाँ, इस फिल्म में एक व्यक्ति की कहानी बताई है जो जेल से कुछ कैदियों को रिहा करवा लेता है और अपने पास रखता है, यानी एक जेलर का काम करते हैं और उन कैदियों को ऐसे जीवन मूल्य सिखाने के लिए जद्दोजहद वो मेहनत करते हैं और उसमें उनकी आंखें भी चली जाती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशन इस फिल्म में मिलता है। और इस फिल्म का एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा, वैसे सारे गीत इस फिल्म में जो है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट है, लेकिन इस फिल्म का एक गाना है जैसे कि ये।

जी हाँ, मैं गाऊं तू चुप हो जा, जिसे भरत व्यास साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है और वसंत देसाई का खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत अभी आपके लिए। और कहना चाहूंगा, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और बहुत ही अच्छा सफर चल रहा है ये, जहाँ पर आप प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं। तो आइए, जब बात कर रहे हैं हम लोग जो एम अल्फाबेट वाले गीत आपको सुना रहे हैं, तो 1960s की अगर बात करें तो एक फिल्म आई थी उस जमाने में, झुमरू नाम का। ये फिल्म भी अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। इस फिल्म को आपने देखा होगा तो कॉमेडी सीन के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों को बताने की कोशिश डायरेक्टर साहब ने की है। और इस फिल्म का एक गीत है जैसे कि ये,
1: मैं हूँ झुमझुम।

मैं हूँ जुम जुम जुम जुम जुम जुम जुम जुम जुमरू। जी हाँ, ये गीत उस जमाने में भी लोग यूं ही गुनगुनाया करते थे, और इस गीत में जो मस्ती है, जो प्यार है, वो आप सुनने के बाद पता चलेगा। तो आइए, इस फिल्म का ये गीत मैं आपको सुनाऊंगा, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, किशोर दा ने गाया है, और संगीत भी किशोर दा ने ही दिया है। तो आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ झुमरू झुमरू, मैं हूँ झुम झुम झुम झुमरू। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, मजरू साहब लिखा। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और फिल्म की बात मैं करना चाहूंगा जो 1968 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ब्रह्मचारी। जी हाँ, ये फिल्म शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने घर से तो अलग हो जाता है, खुद अकेला रहता है, लेकिन जो लावारिस बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चों को पालने का काम करता है। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उनकी देखरेख उतनी ठीक से नहीं होती है। तो इस फिल्म में एक भावना जो है बच्चों की, केयर टेकर की, किस तरह से जुड़ जाती है और वो अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा उन्हें प्यार देता है, ये इस कहानी में बताई गई है। तो आइए, इस फिल्म में एक गीत है जैसे कि ये,
1: मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ।
0: मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। जी हाँ, शैलेंद्र साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध ये गीत अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: कहते हैं सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी किस्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में, और काफी अच्छी बातें हो रही हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ धर्मपुत्र इस एल्बम के बारे में, जिसमें गाना है जैसे कि ये

ये गाना शाहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है, आशा भोसले ने इसे गाया है, एन दत्ता ने इस गाने को संगीत से सजाया है। तो आइए इस गाने का लुफ्त उठाते हैं। और ये गाना भी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज देता है कि मैं जब भी अकेली होती हूँ न जाने क्या क्या होता है। तो आइए गीत को ही सुन लेते हैं, फिर आपसे रूबरू होते हैं। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें जो मैं पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी सुना दूं। तो आइए, आपके जीवन में सदा बढ़ते रहें आप आगे और सूरज की तरह चमकते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए बात करते हैं एक और फिल्म की, 1969 की। जी हाँ, 1969 में एक फिल्म आई थी, प्यार ही प्यार। नाम बड़ा खूबसूरत है और इस फिल्म को देखने के बाद और खुशी आपकी बढ़ जाती है। और इस फिल्म के जो गाने हैं, जैसे कि एक एम अक्षर वाला है जो मैंने ढूंढा है आपके लिए खास, ये

मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ए कविता। जी हाँ, हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन साहब के खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत प्यार ही प्यार। तो चलिए, इस फिल्म में भी प्यार की कहानी बताई गई है, लेकिन उस फिल्म के बारे में ज्यादा मैं जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिल्म देखने से आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस गीत का आनंद उठाते हैं, प्यार ही प्यार का ये खूबसूरत गीत आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ आप सभी, कभी कभी मेरे पास मैसेज आते हैं तो लिखते हैं कि आप जो गाने सुनाते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड गाने होते हैं, बहुत ही अच्छे गाने होते हैं और हम लोग इन्हें सुनकर कहीं ना कहीं एक अलग फील करते हैं, अलग दुनिया में खो जाते हैं। चलिए, अलग दुनिया में खो जाइए लेकिन अपनी दुनिया को भी प्यार से संभालिए। जी हाँ, मेरा मकसद यही है कि आपको सुकून मिले और उस सुख के आधार पर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में वो खुशी, वो सुख बांटे। कहते हैं सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत लाइन के साथ साथ। मैं कहना चाहूंगा कि कितनी अच्छी बात है कि कभी कभी हम लोग हार जाते हैं तो बस इसके वजह से, उसकी वजह से, ऐसा हुआ, वैसे हुआ, इस बात से हम लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं एक डार्कनेस में, एक अंधेरे में डाल देते हैं। उससे अच्छा तो ये है कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, यानी किस वजह से हार हुआ, मेरी क्या कमी रह गई, उसके ऊपर अगर मैं ज्यादा फोकस करूं तो आने वाला कल जीत मेरी ही होगी। आशा करता हूं आपको ये भाव समझ में आ गए होंगे। आइए आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं कार्यक्रम के और इस समय मैं किसी फिल्म का गीत नहीं सुनाऊंगा लेकिन एक गजल आपको सुनाना चाहूंगा सलीम कैसर की, जैसे कि ये।

जी हाँ, इसे जगदीश सिंह ने गाया है, जगदीश सिंह ने ही संगीत से सजाया है। तो ये खूबसूरत सा गजल आपके लिए अभी, और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। ज्यादा ज्यादा से चंद लाइनें, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: बाजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हो जाए दिल कोई।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी।
1: हेलो मनु।
0: आज आप हमेशा की तरह खुश नजर नहीं आ रहे, क्या बात है?
1: कैसे होऊंगा मैं खुश, माँ से मॉम और पिताजी से पा का सफर तय करते करते घर का खाना भी पिज्जा बर्गर और फास्ट फूड बन गया है। बच्चों को पोषण कम मिल रहा है और ऐसे में बीमारियां कम उम्र में ही शरीर को कमजोर करने लगी है मनु। हरी सब्जियां, दाल रोटी, बच्चे इससे ऐसे दूर भागते हैं मानो कोई भूत हो।
0: लेकिन माता पिता भी क्या करें, बच्चे जिद जो करते हैं उनकी बात माननी ही पड़ती है।
1: सेहत के साथ समझौता, आज नहीं तो कल असर दिखता है मनु। और अगर बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए तो अभी उनकी पसंद नहीं बल्कि सेहत देखनी होगी।
0: और बच्चे?
1: बच्चों, टेस्ट जुबान तक ही रहता है, बाद में पेट बेचारा सहता है। अगर कड़वी दवाई इंजेक्शन से बचना है तो खाओ तुम पौष्टिक खाना, ये मेरी बात मेरे नन्हे दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, समझी मनु?
0: हाँ हाँ बिल्कुल पुराना स्तंभ जी। वैसे हरी सब्जियाँ मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है, मगर खाऊंगी तो शायद पसंद आने लगेगी, तो पौष्टिक खाना कल से डन। अच्छा पुराना स्तंभ जी, वीर सावरकर जी की आगे की कहानी भी तो सुनाइए ना।
1: हाँ हाँ हाँ जरूर, तो सुनो वीर सावरकर की कहानी। 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संध्या पर उन्हें सावधानीवश बेलगाम जेल में रोक कर रखा गया। मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को उनके उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्ण होने पर भंग किया गया।
0: अच्छा।
1: 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता रहे।
0: अच्छा।
1: 8 अक्टूबर 1959 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में डी.लिट. की मानद उपाधि से अलंकृत किया।
0: अरे वाह।
1: 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुना बाई चल बसी। 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मार्सिलीज बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर भाग निकले, किंतु पुनः पकड़े गए और भारत लाए गए। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है।
0: बिल्कुल।
1: महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित किया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहां सावरकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से घिरा रहा। एक विशेष न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन काले पानी की दोहरी सजा मिली। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान जेल यानी सेल्यूलर जेल में रहे।
0: अच्छा।
1: 1921 में वे स्वदेश लौटे और फिर 3 साल जेल भोगी।
0: अच्छा।
1: 1937 ईस्वी में उन्हें मुक्त कर दिया गया था, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उनका समर्थन न प्राप्त हो सका और 1947 में इन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया।
0: अच्छा।
1: महात्मा रामचंद्र वीर जो हिंदू महासभा के नेता और एक संत थे, उन्होंने उनका समर्थन किया। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा।
0: अच्छा।
1: और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बाइज्जत बरी करना पड़ा।
0: वाह,
1: उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा आजीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियाँ अधिक प्रसिद्ध है।
0: अच्छा, इतनी सारी किताबें।
1: उन्होंने जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा।
0: ओ,
1: सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे मनु।
0: अच्छा।
1: उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 में मुंबई में हुई थी। 1966 में वीर सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया।
0: अच्छा।
1: उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ होने लगी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी और इनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: ऐसे थे वीर सावरकर जी।
0: कमाल है, देश को आजाद कराने का ये जज्बा और ये निष्ठा अकल्पनीय है।
1: क्योंकि ये कहानी उन हजारों मर मिटने के इरादों से लिखी गई है जो भारत माँ के सपूतों के रोम रोम में बस रहे थे।
0: पुराना स्तंभ जी, मुझे आपकी बात याद आ गई कि अगर स्वस्थ शरीर चाहिए तो स्वस्थ खाना भी तो होगा। फास्ट फूड से तो हम किसी दुश्मन का मुकाबला भी नहीं कर सकते।
1: और ना किसी दोस्त को सहारा दे सकते हैं। स्वस्थ रहना हर वक्त जरूरी है मनु। हम जीवन में अपना ध्यान नहीं रख सकते तो किसी और का क्या रखेंगे।
0: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मतलब हरी सब्जियों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आज की कहानी के लिए थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।